0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vietvala burka. Milci, burka.
2: Hello.
3: Hello. Anshika, ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्री मॉल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्री मॉल पे डाल रखा है, तो
2: हाँ जी,
3: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
2: जी बताइए, इसका नाम क्या है?
3: संतोष। संतोष
2: संतोष
3: संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
2: नहीं, कोई बात नहीं।
3: तो मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो आई मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
2: संतोष क्या करते हो? व्हाट डू यू
3: डू? दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: वैसे आपने सोच लिया था कि ऑफिस में रिजाइन कर दोगे बट द डे यू वर अबाउट टू पुट इन योर पेपर्स एक खूबसूरत लड़की आ गई एंड शी वाज सपोज्ड टू बी वर्किंग अंडर यू नॉट लिटरली और आपने अपने पेपर्स नहीं डाले किस तरह के इंसानों और ये सीक्रेट आप किसे बताओगे
3: द सीक्रेट बॉक्स
2: द राइट आंसर इज मुझे बताओगे मेरा नाम है मिर्ची रोशी कहा मैं आपसे प्यार करना नाम की स्पेलिंग है ROCHIE और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर हाई मिस्ट्री कॉलर
4: हाय रोशी
2: कैसे हो आप
4: मैं बहुत अच्छा हूँ
2: आप आपको जरूरत मुझे पता था आप ये कहने वाले हो मैं कहने ही वाली थी कि आप जरूरत से ज्यादा अच्छे हो क्योंकि जब मैंने आपसे टेक्स्ट भी किया ना इंस्टाग्राम पर तो मैं समझ गई थी कि आप काफी छिछोरे किस्म के इंसान हो नहीं आपको नहीं लगता
4: छिछोरा तो नहीं हाँ मतलब जिंदगी थोड़ी रंगीन सी रही है मेरी
2: ओह रियली नाउ
4: सो एक्चुअली ये हुआ था ना कि मैंने जो बताया ना कि कॉलेज के बाद भी मतलब कॉलेज के दौरान और उसके बाद भी काफी गर्लफ्रेंड्स वगैरह रही है मेरी तो मैं था रिलेशनशिप में कई लोगों के साथ तो घर पे भी थोड़ा सा ये हुआ कि जब शादी वगैरह की बात चलने लगी ना थोड़ा सा कि सीरियस हो गया माहौल कि यार शादी वादी करनी है क्या सोचा है क्या नहीं तो मेरा ये हमेशा था कि यार शादी तो एटलीस्ट घर वालों की यू नो उनकी मंजूरी से
2: कि इधर उधर कहीं पर भी हो आओ कहीं पे भी मुंह मार लो अल्टीमेटली तो संस्कारी बालक बनना ही है
4: एक्चुअली ये मेरे हाँ मेरे घर का एक्चुअली ऐसे सीन था ना कि थोड़ा ज्यादा ही मतलब कि संस्कारी टाइप के है ना तो मैंने सोचा ठीक है उनकी मर्जी से कर लेते हैं तो उन्होंने लड़की की फोटो दिखाई थी मेरे को और उससे बताऊ ना आपको बहुत सुंदर थी यार मतलब अरेंज मैरिज में ऐसा मिलना ना बहुत किस्मत वालों का ही खेल है तो मेरे को ऐसे मिल गई थी वो तो मैंने कहा ठीक है हाँ कर देते हैं तो हाँ कर दिया हमारी बातचीत भी हुई और हुआ ये कि बातचीत करने के 2 महीने बाद ही रोका मतलब ऐसे फिक्स हुआ कि भैया एंगेजमेंट या रोका कुछ कर लेते हैं तो सब मतलब सारे मेहमान आए हुए सब कुछ सेट था हम मतलब मैंने भी वहां पे उससे मिला उससे बातचीत करी रोके के इवेंट में हुआ ये कि मतलब मुझे ना आवाज सुनाई दी पीछे से और वो आवाज थी मेरी एक्स की
2: फिर
4: अब मैं ये सोचने लग गया कि भाई मतलब जितने भी जिंदगी में जितने भी ये करे ना मैंने क्लेश अब लग रहा है आज इसका वक्त आ गया मेरा एंड हो गया मेरा पाप का घड़ा भर चुका लग रहा है
2: फिर
4: तो मैं क्या कैसे रिएक्ट करूं मैं समझ ही नहीं आ रहा और वो मेरी तरफ ही आई मैंने कहा ले गया और आके मुझे कह रही जी जू मैंने कहा हाँ तो मेरी जो मतलब होने वाली पत्नी है ना वो कह रही साली से तो मिलो अपनी मैंने कहा ये साली है मतलब कि जो उसकी जो छोटी बहन है ना 1 महीने पहले ही मतलब जब समझ रहे आप हंस रहे हो लेकिन यार मेरी सिचुएशन मेरी बहुत सट गई थी यार उस टाइम पर
2: मतलब आपने थोड़ा ज्यादा लिटरली नहीं ले लिया साली आधी घर वाली आपके केस में तो मैं आधी भी नहीं बोल सकती हूँ इसको
4: आधी नहीं वो तो थोड़ी ज्यादा ही होगी
2: ठीक है कोई नहीं समझ गए हम ऐसे हर चीज बोलनी थोड़ी होती है आपको जिंदगी में देखो मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ ये आप ही के पापों का घर है दैट इज राइट लेकिन मैं आपको रोशिफाई कर सकती हूँ चाहेंगे आप
4: जी बिल्कुल मेरे थोड़े से पाप कम हो जाएंगे
2: ये लीजिए जनाब Dude, I feel really sorry for you. मतलब लोगों की किस्मत मैंने देखा है बहुत खराब होते हुए बट आपका केस तो कुछ ज्यादा ही खराब है यार इट्स ऑल इन द फैमिली यार होता है ऐसे बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं
4: ठीक है देखते हैं आगे क्या करना है
2: All the best to you, mystery caller. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई basar.com है why don't you hit me up insta पर या fb पर मेरा नाम है मिर्ची रोशी नाम की स्पेलिंग है ROCHIE so do whatever you have to do लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना सुनते रहो मिर्ची it's hot

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: Bro, मेरा नया बॉयफ्रेंड इज लिटरली अ 10 एक्सेप्ट दैट उसकी आर्मपिट्स बहुत ही स्वेटी और स्मेली हैं और वो सारे टाइम चाहता है कि वो अपने आर्म्स ही पुट्स देम अराउंड मी. इज नॉट वर्किंग आउट. आई कांट हैंडल द इकीनेस और द ओडर. अब मुझे क्या करना चाहिए? हेल्प.
0: रोशी के डीएम से.
2: शर्मिष्ठा, यू ड्रामेबाज, इतना ड्रामेटिक मैसेज लिखकर भेजा है. अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है अपने बॉयफ्रेंड के स्मेली एंड हेरी आर्मपिट से, जस्ट आस्क हिम टू शेव हिज आर्मपिट्स. गाइज डू दैट ऑल द टाइम. और कई बार बिकॉज इट इज सो हॉट आउट देयर, ऐसा होता है दैट लाइक यू एंड अप स्वेटिंग अ होल लॉट एंड यू हैव अ पर्टिकुलर बॉडी फ्रेग्रेंस. शेव करने से वो सब ठीक हो जाएगा. अगर वो ऐसा नहीं करना चाहता, नो प्रॉब्लम, गिव हिम अ लॉट ऑफ पानी टू ड्रिंक. जितना हाइड्रेटेड रहेगा उतना कम बॉडी ओडर होगा. वो नहीं होता है तो आस्क हिम टू डू अ नो अनियंस नो गार्लिक काइंड ऑफ डाइट. नाउ आई डोंट नो आप क्या प्रीटेक्स्ट बनाओगे अराउंड इट, बट अगर आप गार्लिक और अनियंस नहीं खाते हो, पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम वेरी पंजेंट बॉडी ओडर, उनके बॉडी फ्रेग्रेंस में काफ़ी हद तक चेंज आता है इफ दे स्टे अवे फ्रॉम गार्लिक एंड अनियंस. यू कैन ऑल्सो आस्क हिम टू हैव अ लॉट ऑफ ग्रीन टी या ईट अ कपल ऑफ बनानास, क्योंकि वो एक स्वेट रिड्यूसिंग फ्रूट है. तो जितने बनानास खाएगा, बहुत सारे ना खाए, बिकॉज देन यू सेंड मी अ मेल सेइंग कि अब वो मोटा हो गया है. बट बेसिकली मैंने सब कुछ कवर कर दिया है. अब यू हैव टू फिगर आउट what to tell your boyfriend and how to tell him that. And while you do that, my dramatic little darling, agar aapki bhi zindagi mein aise hi koi duvidha hai, why don't you hit me up and we'll try and resolve it. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. So go ahead, hit me up on the gram or Facebook, and while you do that, kahin mat jana jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: काम डाउन माय भगजनों, अगर आप चाहते हो कि आपकी फर्स्ट डेट बहुत ही सक्सेसफुल हो एंड इन क्रिएटिव डिफरेंट वेज, देन शायद आपको अपनी फर्स्ट डेट प्लान करनी चाहिए अराउंड अ कॉमेडी शो. माय देन बॉयफ्रेंड एंड आई डिड एग्जैक्टली दैट. हमारी पहली डेट एक कॉमेडी शो में हुई थी एंड वी एंडेड अप लाफिंग सो मच इन दैट एंटायर डेट दैट उसके बाद जब हम कॉफी पीने गए, हम दोनों इतने अच्छे मूड में थे दैट वी हिट इट ऑफ ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड दैट एंडेड अप बीइंग वन ऑफ माय मोस्ट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स एवर. सो ये एक पर्सनल टिप है. Try a comedy show. You will not regret it for a first date idea. And once it works for you, you're already welcome. But thank you bolne ke liye phir bhi. You can find me on Insta ya FB. Mera naam hai Mirchi Roshi. Naam ke spelling hai R-O-C-H-I-E. So go ahead, darling. What are you waiting for? Hit me up. And while you're at it, kahin mat jana jana. Kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi. It's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अगर हम जिंदगी में दूसरे लोगों का वेट करते रहना टू शो यू लव देन शायद सारी जिंदगी निकल जाएगी एंड इट वोंट हैपन द वे यू वांटेड. सो द बेस्ट थिंग टू डू इज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. सेल्फ लव भी कोई चीज़ होती है. अगर आपने फिगर आउट कर लिया हाउ टू लव योर सेल्फ देन यू आर वेरी वेरी कूल एंड हमें डेफिनेटली नोट्स कंपेयर कर लेने चाहिए. एंड टू डू दैट यू कैन हिट मी अप ऑन इंस्टाग्राम या फेसबुक. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. अभी तो मेरे साथ लाइन पर शिफाली है. हाय शिफाली.
3: हाय रोशी.
2: हाउ आर यू? इतने परेशान क्यों साउंड कर रहे हो?
3: I'm not in a really good frame of mind. इसलिए मैंने आपको फोन किया है.
2: क्या हो गया?
3: So I just got engaged.
2: Congratulations.
3: Yeah, I should be happy. जब से हुई है engagement, weird thoughts हैं मेरे दिमाग में.
2: जैसे कि?
3: Like, did I make the correct decision or not? Did I go into this very soon? मुझे समझ नहीं आ रहा है. मैं मुझे खुश होना चाहिए, but
2: You know,
3: what this
2: is not a natural, okay? There's a reason why it's called cold feet, because सारी दुनिया को कभी ना कभी कोई decision लेकर ऐसा लगता है कि शायद I'm not capable of doing this. When I was offered this place to be Mirchi Roshi, तो पहले मैंने हाँ बोला, फिर दो दिन के बाद ना बोला, फिर दो दिन के बाद हाँ बोला और फिर दो दिन के बाद ना बोल दिया. And finally I was like, you know what, चल करके देखते हैं. But tell me this, okay? So cold feet is normal, लेकिन ये बंदा आपके पेरेंट्स ने ढूंढा है या आप यू हैड अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन?
3: इट वाज अरेंज्ड बाय माय पेरेंट्स ओनली. मतलब दे न्यू द फैमिली, दे न्यू द बॉय एंड देन वी गॉट इन टच एंड वी इवेंचुअली हिट इट ऑफ एंड वी स्टार्टेड डेटिंग आल्सो. बट इट्स नॉट लव लव ना, जैसे कि होता है जनरली लोगों में और हम जैसे मूवीज में देखते हैं. आई डोंट नो इफ दिस इज दैट काइंड ऑफ लव. आई डोंट नो.
2: यू नो आई काइंड ऑफ गेट व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज पेरेंट्स ने मिलाया. सो देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम नॉट ऑन डेटिंग एप्स. ओके, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब मुझे प्यार होगा तो वो एक्सीडेंटली एक स्ट्रेंजर के साथ होगा. मैं एक बुक स्टोर में होंगी, मेरे ऊपर एक बुक गिरेगी, वो मेरा बुक उठाएगा.
3: यू नो हम लोग इतने फिल्मी है ना.
2: वो बंदा मेरी बुक उठाएगा और हमारा एक चलो मान लो रिलेशनशिप भी हो जाता है. विल ही बी द काइंड ऑफ गाय हु विल टेक केयर ऑफ मी एंड लव मी एट माई वर्स्ट? एंड दैट्स अ क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क यू. क्या वो एक ऐसा इंसान है जिसने आपको रोते हुए देखा और आपकी नाक से स्नॉट निकलते हुए देखा है?
3: हैज ही
2: सीन यू प्यूक?
3: Yeah,
2: yes. And has he loved you even then? Like, उसके बाद इसका रिएक्शन ये नहीं था कि ew, जा जरा जाके शिफाली अपना मुंह धो के आ.
3: No, he's the guy who, you know, puts the hair out of my face while I'm puking. He's that kind of guy.
2: Dude, then you have your answer, right? This is the guy who loves you when you're puking. Yeah, what more do you want in life?
3: Okay, now I'm feeling guilty. Thinking like this is not good.
2: No, you know, honestly, everyone has cold feet. Everyone feels guilty. You got this guy, yeah. Man. What more do you want?
3: I love you so much.
2: You are so amazing, Shefali. It was so amazing talking to you. Don't forget to send me your shaadi ka card when it happens, okay?
3: That.
2: Awesome. This is amazing. Aur aisi meethi news par, agar aapki bhi zindagi mein kuch like tangy hai, khatta hai, why don't you hit me up and we'll get talking about it. Mera naam hai Mirchi Roshi. Naam ki spelling hai ROCHIE. Hit me up on Insta ya FB and we'll talk. It's a promise.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आप चाहते हो कि अपनी पहली डेट जल्दी खत्म कर लो बिकॉज यू वॉन्ट टू कीप द मिस्ट्री गोइंग, लेकिन आप चाहते हो कि पहली डेट और दूसरी डेट के बीच में योर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड टू बी इज नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एक्सेप्ट यू, देन इन दैट केस माई डार्लिंग कलर थेरेपी आपकी जरूर मदद कर सकता है. अगर आप बॉस एनर्जी क्रिएट करना चाहते हो इन योर फर्स्ट डेट एंड मे बी इवन योर सेकेंड और 65th डेट, हु नोज, कलर थेरेपी के हिसाब से यू जस्ट नीड टू यूज द कलर ब्लैक. ब्लैक एक ऐसा कलर है जो ना कि सिर्फ आपको बहुत ही स्लेंडर दिखाता है, आपकी इम्परफेक्शंस को हाइड करता है, इट क्रिएट्स एन ऑरा ऑफ मिस्ट्री. और अगर आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपसे बेहद मोहब्बत करने लगे और ऐसा क्रश करे आप पे कि उसे समझ ना आए दैट यू आर द वन टू फर्स्ट क्रश ऑन दैट पर्सन, देन ब्लैक इज योर बेस्ट बेट फॉर द फर्स्ट डेट. इसे ट्राई करके देखो एंड वंस इट वर्क्स फॉर यू, व्हिच आई नो इट विल. थैंक यू बोलने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead, darling, do what you need to do. लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Roshi, Roshi.
1: Mirchi Roshi.
2: Only on Radio Mirchi, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
3: इस तरह के फिनोमेना सिर्फ मेरी बेस्टी के साथ हो सकते हैं या फिर अब्रॉड लोगों के साथ हो सकते हैं. लेट्स जस्ट गो विद दैट वन बिकॉज मेरी बेस्टी के अलावा और मैंने किसी से ये नहीं सुना है. सो शी केम बैक यस्टरडे, उसने मुझे फ़ोन किया एंड शी सेड रोशी आई जस्ट हैड अ जिमनाजम एंड आई वाज लाइक भाई मैंने तरह तरह की चीज़ें सुनी है, ये जिमनाजम क्या होता है. शी सेड अगर आप बहुत इंटेंस कोर एक्सरसाइजेस कर रहे होते हो तो कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी यू एंड अप बीइंग प्लेजर्ड. I was like seriously, she said हाँ. और ऐसा नहीं है कि हम जिम में कुछ लाइक यू नो अनफॉरबिडन चीज़ें कर रहे होते हैं, सिर्फ कोर एक्सरसाइजेस करते करते कई बार इफ़ यू आर लकी इनफ देन आप चर्म सुख की सीमा प्राप्त कर सकते हैं विदाउट इवन ट्राइंग और थिंकिंग अबाउट इट. एंड आई वॉज लाइक माई गॉड दैट इज़ सम सीरियस इन्फॉर्मेशन. और इस चीज़ का नाम भी है, मतलब सरप्राइज सरप्राइज, इट्स कॉल्ड अ जिमनाजम. तो अगर आपको कभी जिमनाजम हुआ है आई रियली वॉन्ट टू नो योर मॉर्निंग स्टोरी. एटलीस्ट मुझे ये लगेगा कि मेरी बेस्टी एक लौता पागल इंसान नहीं है इस दुनिया में. एंड टू टेल मी योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड डू व्हाट यू आर सो गुड.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: वैसे आपने सोच लिया था कि ऑफिस में रिजाइन कर दोगे, बट द डे यू वर अबाउट टू पुट इन योर पेपर्स, एक खूबसूरत लड़की आ गई एंड शी वाज सपोज्ड टू बी वर्किंग अंडर यू, नॉट लिटरली, और आपने अपने पेपर्स नहीं डाले. किस तरह के इंसान हो और ये सीक्रेट आप किसे बताओगे?
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: द राइट आंसर इज मुझे बताओगे. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हाई मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशी,
2: कैसे हो आप?
4: मैं बहुत अच्छा हूँ.
2: आपको जरूरत, मुझे पता था आप ये कहने वाले हो. मैं कहने ही वाली थी कि आप जरूरत से ज्यादा अच्छे हो, क्योंकि जब मैंने आपसे टेक्स्ट भी किया ना इंस्टाग्राम पर, तो मैं समझ गई थी कि आप काफी छिछोरे किस्म के इंसान हो. नहीं, आपको नहीं लगता?
4: छिछोरा तो नहीं, हाँ, मतलब जिंदगी थोड़ी रंगीन सी रही है मेरी.
2: ओह रियली? नाउ
4: सो एक्चुअली ये हुआ था ना कि मैंने जो बताया ना कि कॉलेज के बाद भी, मतलब कॉलेज के दौरान और उसके बाद भी काफी गर्लफ्रेंड्स वगैरह रही है मेरी, तो मैं था रिलेशनशिप में कई लोगों के साथ. तो घर पे भी थोड़ा सा ये हुआ कि जब शादी वगैरह की बात चलने लगी ना, थोड़ा सा कि सीरियस हो गया माहौल कि यार शादी वादी करनी है, क्या सोचा है क्या नहीं. तो मेरा ये हमेशा था कि यार शादी तो एटलीस्ट घर वालों की, यू नो, उनकी मंजूरी से,
2: कि इधर उधर कहीं पर भी हो आओ, कहीं पे भी मुंह मार लो, अल्टीमेटली तो संस्कारी बालक बनना ही है.
4: एक्चुअली ये मेरे, हाँ, मेरे घर का एक्चुअली ऐसे सीन था ना कि थोड़ा ज्यादा ही, मतलब कि संस्कारी टाइप के है ना,

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Breaking news, Mirchi par aane wala hai hit gana.

0: only on Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैन हैटन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: मेरे एक्स के बारे में ना मुझे सिर्फ एक चीज मतलब काफी चीजें थी जो पसंद नहीं थी, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली यूज्ड टू इरिटेट मी इज कि जब भी हम इकट्ठे होते थे वो कुछ ना कुछ चला देता था टीवी पर, एंड ही यूज्ड टू एक्सपेक्ट कि हम इकट्ठे बैठ के कोई फिल्म देखेंगे, कोई डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, कोई सीरीज देखेंगे, बट दैट काइंड ऑफ मेंट दैट हमें एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं होता था. वी वर ऑलवेज लुकिंग एट अ फिल्म और वी वर लुकिंग एट अदर थिंग्स बट नेवर टॉकिंग टू ईच अदर. एंड जब हमारा ब्रेकअप हुआ ना, आई रियलाइज कि हमारे ब्रेकअप में एक मेजर रोल था उस टीवी स्क्रीन का जो हमेशा हमारे बेडरूम में होती थी. एंड आई गेस जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो, एज मच एज नेटफ्लिक्स एंड चिल इज अ थिंग, अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप डीपली सीमेंटेड हो तो लर्न समथिंग फ्रॉम माई टेरेबल मिस्टेक्स इन द पास्ट. अपने बेडरूम में टीवी कभी मत रखना, बिकॉज अगर ऐसा होता है ना, यू एंड अप वॉचिंग कॉन्टेंट विच इज ग्रेट, बट यू ऑल्सो एंड अप नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, विच इज नेवर ग्रेट फॉर अ रिलेशनशिप. इस नॉन टीवी टाइम को ट्राई करके देखो, एंड वंस इट वर्क्स फॉर यू, मुझे थैंक यू बोलना मत भूलना. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और जिसके पास लव है उसके पास सब है, एंड आई लव यू लोड्स.

0: पूरा जर्सी जानता है, यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Har gana hit, har dusra gana super hit.
4: Only on Radio Mirchi. It's hot.

0: गाना बजा दूं।
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
2: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
2: Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm.

पुरानी जीन्स पर हेलो हेलो, मैं हूँ श्रेया और आज ना पुरानी जीन्स पे उस जमाने के गानों के साथ बात होगी बेगम मुमताज जहान दहलवी की। क्या कह रहे हो, नहीं पहचाने? अरे बिल्कुल जानते हो भाई। चलो एक हिंट देती हूँ कि जब भी कोई बला का खूबसूरत लगता है ना तो उसको कॉम्प्लीमेंट में कहा जाता है। क्या बात है, आज तो बिल्कुल मधुबाला लग रही हो। सो यस, आज होगी मधुबाला जी की बातें। शुरुआत करेंगे एक ऐसे काम से जो मधुबाला जी को बहुत पसंद था। जैसे ही शूटिंग खत्म होती थी ना, वो ये काम जरूर करती थी और वो करने से ना उन्हें फ्रीडम महसूस होता था, आजादी लगती थी। क्या था वो काम? अब आपको तो मेरी आदत इतने दिनों से पता ही चल गई, सब कुछ एक बार में नहीं बताती हूँ। सो कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स, मैं हूँ श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: परवड़िया तो कन्या
1: बैठी पनवड़िया तो कन्या
0: उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले।

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, वेद इस जमाने की श्रेया। पुरानी जीन्स पे ना आज बात हो रही है मधुबाला जी की। तो मैं बता रही थी कि कैसे उनको एक चीज बेहद पसंद थी, इनफैक्ट वही एक चीज उनको अलाउड भी थी। शूटिंग जब खत्म हो जाती थी तो उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। मधुबाला जी को ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि उन्हें सीधे सेट से घर और घर से सेट जाना है। ऐसे में वो अपना फ्रीडम, अपनी आजादी पता है किस में ढूंढती थी? ड्राइविंग में। उन्हें ड्राइविंग करना बेहद पसंद था, तो हमेशा ड्राइवर को पीछे बैठाती थी और घर का एक लंबा रास्ता लेते हुए वापस जाती थी। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें उनके गानों के साथ, तो बस कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: ये मधुबाला नाम की किताब कैसे खुली?
1: मेरा मतलब है कि मधुबाला जी की जर्नी कैसे शुरू हुई, अभी बताती हूँ। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूँ श्रेया। उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान जी काम करते थे पाकिस्तान में। पेशावर में एक कंपनी थी जिसका नाम था इम्पीरियल टोबैको कंपनी। वहाँ से एक दिन उनकी नौकरी छूट गई, वो अपने पूरे परिवार को लेकर के दिल्ली आ गए। उसके बाद काम ढूंढते ढूंढते मुंबई आए। मुंबई में जब वो काम करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि बॉलीवुड में, यानी तब तो ये इंडियन सिनेमा कहलाया जाता था, वहाँ पर एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत है। अताउल्ला खान जी को ये तो पता था कि उनकी बेबी मुमताज यानी मधुबाला बेहद खूबसूरत है, तो बस वो उनको लेकर के अगले दिन पहुंच गए स्टूडियोज, और वहां पे बेबी मुमताज ने की अपनी पहली मूवी एज चाइल्ड आर्टिस्ट। इस मूवी का नाम था बसंत, वे बैक 1942 में। उसके बाद मधुबाला जी ने कई सारी फिल्मों में काम किया, फुलवारी, पुजारी, राजपुतानी, बहुत सारी। बस यहीं से उनकी जिंदगी में भी ट्विस्ट एंड टर्न भी शुरू हो गए। अभी इनके बारे में बताऊंगी, गानों के उस पार मिलते हैं ना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात की दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

अच्छा, वो पहली फिल्म कौन सी थी जिससे मधुबाला जी ने अपने करियर की शुरुआत करी एज लीड एक्ट्रेस? बताओ बताओ। पुरानी जीन्स पर, हाय मैं हूँ श्रेया। यू नो व्हाट, सिर्फ 14 साल की थी वो जब लीड एक्ट्रेस बन गई थी। 14 बोले तो मतलब अगर आप स्कूल में हो तो 8th या 9th क्लास में होगे। और उनके ऑपोजिट एक ऐसे एक्टर थे जो इंडस्ट्री में थे तो बहुत टाइम से, लेकिन एक बड़ी फिल्म की तरह उनकी भी ये पहली फिल्म थी। एंड इट वॉज नन अदर देन राज कपूर साहब। मूवी का नाम था नीलकमल, जिसमें दोनों अपने बड़े बड़े सपने लेकर के मैदान में उतरे थे। अभी तो उस जमाने के और भी बहुत सारे किस्से बाकी हैं, तो जल्दी से गाने सुन करके वापस आओ विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: भांग की गोली और नखरे वाली
1: दूंगी मैं गाली।

0: Radio Mitri, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: देख रे एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल।

0: हल्ला मचाएंगे, धुल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बाजेगा ठम ठम ठम। हे मन्नु भाई मोटर चली पम पम पम,
1: मन्नु भाई मोटर चली पम पम पम।
2: जब भी कोई बहुत खूबसूरत होता है तो कहते हैं ना, आहा क्या मधुबाला लग रही हो। तो आज बस मधुबाला जी की बातें बैक टू बैक श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जींस। हाँ, तो मैं बता रही थी कि एज अ लीड लेडी उनको उनका पहला ब्रेक मिला राज कपूर के ऑपोजिट। ये फिल्म थी बहुत पुरानी, 1947 की, नीलकमल। ये बनाने वाले थे केदार शर्मा साहब। अच्छा, बहुत कम लोगों को पता है कि राज कपूर के साथ उन्होंने कई सारी फिल्में की हैं। एन एम केलकर की एक फिल्म आई थी अमर प्रेम, ना ना ना राजेश खन्ना वाली नहीं, बल्कि इसमें थे राज कपूर अगेन पेड अप विथ मधुबाला जी। एक फिल्म आई थी मोहन सिन्हा की जिसका नाम था दिल की रानी, इसमें भी राज साहब और मधुबाला जी थे। एक्चुअली में राज कपूर और मधुबाला जी की जो केमिस्ट्री थी इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, बिकॉज काफी पुरानी बात है, 1940s और 50s की। आज मैं पता करके आई थी तो आपके साथ शेयर कर ली। आगे कौन कौन से किस्से हैं सब बताऊंगी, वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जींस।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: I want to live the story of Madhubala.
1: ये लिखने वाले थे कातिजिया अकबर। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया और आज मधुबाला जी की बातें बैक टू बैक चल रही हैं। सो मैं बता रही थी कि ये जो बुक थी ये मधुबाला की बायोग्राफी थी जो अकबर साहब ने लिखी थी। उसमें ना उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात मेंशन की है। ही सेड कि मधुबाला इतनी खूबसूरत थी, इतनी वाइट थी, उनकी स्किन ऐसे आर पार दिखती थी, एकदम ट्रांसलूसेंट थी कि जब भी वो पान खाती थी, एंड बाय द वे पान खाने की काफी शौकीन थी, तो उनके थ्रोट से, उनके गले से उतरता हुआ पान तक दिखता था। मतलब ये बोलते हुए भी ना मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि काश हमने मधुबाला जी को देखा होता। अच्छा, आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई जरूर उनका जबरदस्त फैन होगा, जैसे मेरी फैमिली में मेरे पापा। और आप क्या, कौन है बताना मुझे। फेसबुक और इंस्टा पे मिल सकते हो RJ श्रेया विद लव, दैट्स RJ SHREYA विद लव, ये है मेरा हैंडल। अभी और भी बातें बाकी, सुबह वापस आऊं।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
3: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.

0: only on Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मधुबाला जी सेट पे हमेशा पंक्चुअल।
1: पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। जितने भी लोगों ने मधुबाला जी के साथ काम किया है और कभी उनके बारे में लिखा है तो उनकी पंक्चुअलिटी के बारे में जरूर लिखा है। उनकी लार्ज फैमिली को पैसे का सपोर्ट देने वाली इकलौती मधुबाला जी थी और कहते हैं कि वो मशीन की तरह काम करती थी, अपना ख्याल कम रखती थी, खाना मिस करती थी और मेट्रो के ओवरक्राउडेड कंपार्टमेंट में मलाट से दादर, दादर से मलाट करती रहती थी, पर कभी भी सेट पे एब्सेंट या लेट नहीं होती थी। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें बैक टू बैक चलेंगी ना श्रेया के साथ, सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा कबड़क कबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन 1 2 3

इनफैक्ट वो अपनी ही फिल्मों के प्रीमियर पे नहीं जा सकती थी। कुछ किताबों ने तो ये भी लिखा है कि इन्हीं चीजों से वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हर्ट थी, और क्योंकि वो अपने अब्बा के खिलाफ नहीं जा पाती थी, वो बहुत ही मायूस और सेट पे चुप चुप रहने लगी थी। एक बार तो उन्होंने खुद कहा कि खूबसूरत होना खुशी देता है, लेकिन असली खुशी मिल जाए ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया, वापस आओ और भी बातें करेंगे उनकी।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

देव आनंद और मधुबाला जी ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा किस्सा हुआ जिसने मधुबाला जी की जिंदगी थोड़ी सी बदल दी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। देव साहब और मधुबाला जी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उसी शूट पे कुछ फॉरेन के लोग देव साहब से किसी नए प्रोजेक्ट के लिए मिलने आए। उन लोगों में काफी देर तक बातचीत चलती रही और मधुबाला जी अपनी चेयर पे बैठ करके देख रही थी। जब वो लोग वहाँ से चले गए तो वो देव साहब के पास गई और उनसे पूछा, ये लोग क्या बात कर रहे थे आपसे? अब देव साहब ने या तो जानबूझ करके या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं थे मधुबाला जी को कुछ भी बताने में। तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये कह के वो वहां से चले गए, पर ये बात मधुबाला जी के दिल पे तीर की तरह लगी। घर जाते ही उन्होंने एक काम किया। What was that? अभी बताऊंगी। वापस आओ श्रेया के साथ, only on पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया और मधुबाला जी और देव साहब की फिल्म की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा बता रही थी। इस फिल्म के सेट पे देव साहब से मिलने कुछ फॉरेन के लोग आए, वो कोई नया प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। उनकी ये मीटिंग काफी लंबी चली। मधुबाला जी तब तक देव साहब का वेट कर रही थी और साथ में देख रही थी कि उस एक केबिन में क्या चल रहा है। जैसे ही वो लोग वहां से गए, उन्होंने देव साहब से पूछा, क्या बात हो रही थी? देव साहब या तो बहुत जल्दी में थे या फिर उन्हें बताने का मन नहीं था, तो उन्होंने कह दिया, तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब ये बात मधुबाला जी को तीर की तरह लगी। उन्हें ये लगा कि क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए देव साहब ने उनको इंसल्ट किया। फिर क्या, अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करती थी वो हमेशा। जैसे ही ड्राइव करके घर वापस गई, उन्होंने एक फोन घुमाया। वो फोन था एक इंग्लिश ट्यूटर को। 17 साल की उम्र में उन्होंने फर्राटे से इंग्लिश लिखनी सीखी और इंग्लिश बोलनी सीखी। उन्हीं की ढेर सारी बातें श्रेया के साथ आज ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हॉलीवुड के एक बहुत फेमस डायरेक्टर थे फ्रैंक कैप्रा। वो 3 एकेडमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट डायरेक्टर भी जीत चुके थे। एक बार वो मुंबई आए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया को अटेंड करने। वहां पे जब उन्होंने मधुबाला जी को देखा तो उनकी खूबसूरती को देख करके वो इतने इम्प्रेस हुए कि बस वो चाहते थे किसी तरह मधुबाला हॉलीवुड आ जाए और वहां पे लॉन्च हो जाए। इसके लिए उन्होंने मधुबाला से बहुत मिन्नतें की, लेकिन भाई उनके सारे डिसीजंस तो उनके अब्बा यानी अताउल्लाह खान लेते थे। उनके अब्बा ने साफ मना कर दिया। अब वो मधुबाला को दूसरे शहर तो जाने देते नहीं थे, दूसरे देश कैसे जाने देते। सो फ्रैंक कैप्रा का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। पुरानी जींस पर मैं हूं श्री।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा कबड़क कबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन
5: हर गाना हिट हर दूसरा गाना सुपर हिट
6: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
7: सुनो सुनो अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनो अरे मदन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओ कर्नल सिंह ओ जनरल सिंह अरे तुझी भी सुनो पापे

पुरानी जींस में आबू श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी वी गॉट टू हिट द हाईवे। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट उन लोगों के लिए है जो पहली मुलाकात में तो घबराए होते ही हैं, लेकिन जब भी उनसे मिलते हैं तो वो पहली मुलाकात ही लगती है, उतनी ही रोमांटिक लगती है, उतना ही एक्साइटमेंट होता है उनसे मिलने से पहले जैसे कि पहली बार मिल रहे हो। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है तो ये गाना आज उनके लिए और ऑफ कोर्स आपके लिए। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू टुमारो। ख्याल रखो अपना, एंड या इफ यू मिस मी यू नो वेयर टू कैच मी, फेसबुक और इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव इज माई हैंडल, दैट्स आरजे SHRUYA श्रेया विद लव। गुड नाइट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Breaking news. Mirchi par aane wala hai hit gana.
4: Hit, hit, hit, hit, hit gana.
5: Hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit,

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

Radio Mitchie, New York. It's hot. It's hot.

0: हरि पवन
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
2: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: été.
1: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
2: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: डिसीजन लेने की पावर एक्शन में कब आती है, चलिए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर श्रेया, कुछ सालों पहले एक शब्द बहुत फेमस हुआ था, पॉलिसी पैरालिसिस। ये एक स्पेशल व्यक्ति के लिए कह गया था, मुझे लगता है बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। लेकिन मेरा सवाल कोई तरह से पॉलिटिकल नहीं है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कई बार ये हमारी जिंदगी में बहुत होता है कि हम डिसीजन ही नहीं ले पाते, हम पैरालिसिस में चले जाते हैं। और क्योंकि हम 8 भुजाएं जो हैं नवरात्रि के दौरान उनके 8 स्पेशल पावर्स के बारे में स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता था पावर टू डिसाइड जो होता है वो ओवरथिंकिंग की वजह से होता है, इनएक्शन की वजह से होता है, या पावर टू डिसाइड कब काम आता है?
4: पावर टू डिसाइड हर सेकंड काम आता है
3: जी।
4: आप हर दिन में कितने कितने आपको डिसीजंस लेने होते हैं जिससे आपकी लाइफ इम्पैक्ट होती है, पर अभी आप ऐसा देखा जाता है कि हमें जब अपना कोई डिसीजन लेना होता है हम नहीं ले पाते। हम कितनों के पास जाते हैं पूछने के लिए, और अगर उनका कोई डिसीजन लेना हो और हाँ, वो हमारे पास
3: हम फटाक से ले लेते हैं।
4: हम किसी का डिसीजन लेने में 1 सेकंड लगाते हैं
3: जी।
4: लेकिन अपना इतने दिनों तक सोचने के बाद भी नहीं ले पाते हैं, तो इससे समझ में आता है ना कि वो जो पावर है हमारी वो कमजोर हो गई है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आखिर पावर टू डिसाइड होता क्या है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो पावर टू डिसाइड ये शक्ति क्यों है कि भाई मैं तय कर पाता हूँ कोई चीज, ये पावर कैसे हुआ?
4: क्योंकि इस समय पर हर चीज में राइट और रॉन्ग है।
3: हाँ बिल्कुल,
4: जैसे ही द्वापर और कलयुग होता है आपके पास हमेशा चॉइसेस होती हैं। ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये सही है, ये गलत है।
3: हाँ।
4: तो आपको डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा क्या करता है, आपको बस दो दे करके छोड़ देता है। वो आपको कहता है जैसा आप करेंगे वैसे आपका जीवन बनेगा, आपके कर्म से आपका भाग्य। तो आपको वो इसलिए भगवान के पास जाकर क्या कहते हैं, पहली चीज इसको क्या दो?
3: हाँ।
4: सत बुद्धि।
3: सत बुद्धि दो।
4: कोई हाँ, भी जाएगा ना, इसको सतमति दो, सत बुद्धि दो।
3: हाँ।
4: क्यों दो? क्योंकि वो बुद्धि तो डिसाइड करेगी ना राइट क्या है और रॉन्ग क्या है।
3: हाँ।
4: उस अनुसार आप कर्म करेंगे, उस अनुसार आपका भाग्य बनेगा, आपकी डेस्टिनी बनेगी।
3: सही बात।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांस में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभावपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन होता है? चलिए इस पर सोचते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मेरे एक बहुत प्रिय बॉस होते थे बहुत साल पहले, तो कई बार मैं उन्हें कुछ ईमेल लिखता था और उसका जवाब कई दिनों तक नहीं आता था। फिर मैं उनसे बात करता था, मैंने कहा क्या हो गया, तो उनकी फेवरेट लाइन हुआ करती थी, समटाइम्स नॉट टेकिंग अ डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन। जब मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला इसका मतलब तुम समझ जाओ। और मुझे बड़ी प्यारी लाइन लगती थी कि कभी कभी डिसीजन हो गया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया उसको। तो ये क्या सही है कि कभी कभी डिसीजन नहीं लेना भी एक डिसीजन है?
4: आप जब डिसीजन नहीं ले रहे तो वो भी आप डिसीजन तो ले रहे ना कि ये नहीं करना है। मेबी यू आर नॉट पुटिंग इट इनटू वर्ड्स,
3: कम्युनिकेट नहीं कर रहे,
4: पर आपने डिसाइड तो किया ही ना कि ये नहीं करना है
3: जी।
4: क्योंकि कभी कभी ना सुनना बहुत मुश्किल लगता है,
3: आप
4: समझते हैं कि शायद साइलेंस से अपने आप उसको वो आंसर मिल जाएगा
3: जी।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डिसीजन लेना इतना मुश्किल क्यों लगता है, आइए इसके पीछे की वजह समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: लेकिन फिर भी ये जानना चाहता हूँ, डिसीजन लेना इतना मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें दिमाग में आ जाती हैं। मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो, ये अगर सही नहीं हुआ तो,
4: कंफ्यूजन है ना
3: जी।
4: अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो उसका मतलब कि आपका मन जो है बहुत कंफ्यूज्ड है
3: जी।
4: तो कौन सा मन है जो राइट डिसीजन ले सकता है? जैसे एक्चुअली जो डिसीजंस हैं वो बहुत इंट्यूटिव होने चाहिए।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: जो हमारी इंट्यूशन है वो हमेशा मेजोरिटी टाइम्स राइट ही होती है।
3: हाँ।
4: लेकिन वो इंट्यूशन एक्टिवेट कब होती है? जब आपका मन स्टिल होता है।
3: हाँ, ओके।
4: जैसे
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
4: आपको अगर नीचे देखना है, रिवर बेड के नीचे देखना है, तो ऊपर जो पानी है वो कैसा होना चाहिए? हलचल होगी
3: स्टिल,
4: तो ही आप देख पाएंगे। अगर मन में बहुत हलचल है तो वो इंट्यूशन एक्टिवेट नहीं होती है। तो इंट्यूशन को एक्टिवेट करने के लिए आपका मन जितना शांत होगा, क्योटिक नहीं है, क्योस नहीं है, क्लटर नहीं है, इट्स वेरी वेरी पीसफुल, तो वो एक्टिवेट होगी।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अपनी गट फीलिंग को फॉलो करना सही होता है या रिस्की? चलिए बात करते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये कई बार सुनने को आता है कि फॉलो योर गट, इंस्टिंक्ट को फॉलो करो, इंट्यूशन बहुत हमारी स्ट्रांग होती है और ज्यादातर वो सही आपको मार्ग पर पहुंचाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हमें क्या करना होता है, लेकिन कई बार उसको फॉलो करने से कुछ गलत भी हो जाता है। तो ये जो इंट्यूशन है, ये जो गट है, इंस्टिंक्ट है, इसको बढ़ाए कैसे, इसकी शक्ति को कैसे बढ़ाए और कब समझ में आए कि ये सही है और ये गलत है?
4: इंट्यूशन एक्टिवेट होती है विजडम से।
3: जी बिल्कुल।
4: एक है मन, फिर है इंटेलेक्ट, फिर है विजडम।
3: हाँ बिल्कुल।
4: मन, हम कई बार कहते हैं ना, जो मन कर रहा है वो कर लो, नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका मन अगर कमजोर है तो वो आपको कहीं पर बहुत गलत करने के लिए भी,
3: बिल्कुल, जैसे खाने पे हम कहते हैं पेट भर गया मन नहीं भरा, तो गलत ही करवा रहा है वो।
4: अब आपका मन कह रहा है आपको डायबिटीज है, मन कर रहा है मीठा खा लो,
3: रसगुल्ला खा ही लेते,
4: तो जरूरी नहीं है। इसको मनमानी कहते हैं।
3: हाँ, मनमानी, बिल्कुल सही कह रही है।
4: मनमानी आचरण है आप, वो राइट नहीं है, जरूरी नहीं है
3: कि आपने मन की मानी नहीं, लेकिन अपनी मनमानी कर ली।
4: अपने मन की तो मानी ना, आपका मन इतना पावरफुल नहीं था जो आपको कह सके कि ये नहीं करना है।
3: हाँ, सही बात।
4: आपका मन आपके अगेंस्ट ही तो जा रहा है ना, पता होते हुए भी आप गलत कर रहे हैं।
3: सही बात है।
4: दूसरा है इंटेलेक्ट। कहीं बहुत इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वाइज है।
3: सही। हाँ, ये क्या बात, बहुत बढ़िया।
4: आप इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, आपने बहुत पढ़ा,
3: बहुत पढ़ा है, बहुत ज्ञान है आप में, लेकिन जरूरी नहीं है कि उससे आपने अपनी क्षमता ऐसी बढ़ा ली हो कि सही आप डिसीजन।
4: विजडम अलग चीज होती है। आप हर टॉपिक पर बोल सकते हैं, आपके पास हर टॉपिक की क्लैरिटी है। कहीं तो एग्जाम्स क्लियर करने के लिए भी कितना कितना कितना पढ़ना होता है,
3: तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो भी सही डिसीजन ले पाए।
4: नहीं, जरूरी नहीं है। तो इंटेलेक्ट, बहुत इंटेलेक्चुअल होने के बाद भी जरूरी नहीं है। विजडम अलग चीज होती है। जब हम विजडम की बात करते हैं, जो हम बात करें वो इंट्यूशन है। आपकी बुद्धि के अंदर इतना अनुभव की अथॉरिटी है, सिर्फ ज्ञान नहीं है लेकिन अनुभव की अथॉरिटी है, और उससे वो जो इंट्यूशन एक्टिवेट होती है वो 100% राइट होती है। तो जो आपने कहा गट है, वो गट गलत नहीं होता। अगर वो गलत है तो वो था ही नहीं।
3: अच्छा,
4: देखो इंट्यूशन के निशानी, जो तीन निशानी है कि वो, अगर वो इंट्यूशन है, अगर वो गट फीलिंग है, तो वो थोड़ा आपकी बुद्धि की कैपेसिटी के बियॉन्ड होती है।
3: अच्छा,
4: माना आप उसको कॉन्शियसली नहीं सोच रहे, वो आती है।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: इट इज दैट वन थॉट जो आपको छोड़ता नहीं है, इट इज रिपीटेड, इट इज वन थॉट, इट इज वेरी वेरी पावरफुल, और उसके अंदर सफलता समाई होती है।
3: बिल्कुल,
4: ये तीन बातें हैं। इट इज वन थॉट,
3: वन थॉट रिपीटेटिव,
4: इट इज वेरी वेरी पावरफुल, और उसके अंदर सक्सेस समाई होती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: राइट इंट्यूशन और सिर्फ इमोशनल इंपल्स के बीच का फर्क कैसे पहचाने, आइए समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: रास्तों में मुश्किलें आएंगी तो पता है, डिसीजन जब हम ले रहे हैं, आपने कहा तीन बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें आपको आएंगी इंट्यूशन के लिए। एक तो है कि वो थॉट आपको आएगा, जोर से आएगा, रेपिटेटिवली आएगा और बहुत पावरफुल थॉट होगा। कभी कभी गलत चीजों के लिए भी ऐसे पावरफुल थॉट आते हैं। मुझे बहुत जोर से आ रहा है कि रसगुल्ला खाना है, रिपीटेडली आ रहा है और पावरफुली आ रहा है कि भैया रसगुल्ला तो आज खाना ही है, और अंत में मैं बोलता हूँ फ्रिज खोल के वो खा ही लेता हूँ। तो ये जो इंट्यूशन है जो आप कह रही है वो आपको पता चल जाएगा, वो गलत चीजों के लिए भी काम कर रहा है। हाउ डू यू डिसाइड क्या सही है क्या गलत?
4: दैट इज विजडम ना, दैट इज व्हाट विजडम इज। यही तो हमने कहा ना, एक मनमानी है और एक विजडम है। विजडम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप डेवलप करते हैं
3: कि भाई ये मेरे शरीर के लिए सही
4: नहीं है। जैसे आप किसी सेंट वाले के पास जाते हैं, आप कहते हैं ये संत आत्मा है, तो उसने वो विजडम कैसे डेवलप किया होता है? उसने शास्त्रों को पढ़ करके, उसका अध्ययन करके, सत्य के मार्ग पर चल करके, अनुभव की अथॉरिटी को डेवलप किया है। तो ये तो आप उसके पास जाते हैं कि आप बता दो सही क्या है, गलत क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो उसने उस चीज को डेवलप किया ना। अगर आप ऐसे ही सही सुनते रहते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, उससे एक्सपीरियंस को डेवलप करते हैं, तो आपको समझ में आता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
1: अगर डिसीजन लेने के बाद आपने पावर टू डिसाइड यूज किया, इंट्यूशन भी सही था और बाद में पता चला कि गलत हो गया डिसीजन, क्योंकि हर डिसीजन आपका सही होगा ये जरूरी नहीं है, कुछ चीजें उल्टी भी पड़ जाती हैं, तो गिल्ट आ जाता है, उसका क्या करें?
2: पहले तो जो हमने कहा इंट्यूशन जो होता है वो ज्यादातर गलत डिसीजन नहीं होता, पर कॉन्शियस माइंड से लिए वो डिसीजन गलत हो सकते हैं। हम हर समय हमारी इंट्यूशन इतनी एक्टिवेटेड नहीं होती है, और हम अगर हमारे मन में थोड़ा क्योस है, क्लटर है, कंफ्यूजन है, कई बार डिसीजन गलत हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर डिसीजन गलत हो गया तो भी क्या हो गया,
1: सीखने को मिला कुछ, ये तो नहीं करना।
2: परफेक्ट तो देखो है नहीं हम में से कोई भी, हमारे से गलत डिसीजन हो सकते हैं, लेकिन जब गलत हुआ, जिस समय आपने डिसीजन लिया था उस समय आपको 100% वो राइट लग रहा था। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट भी है, उसको लग रहा था नहीं मुझे इंजीनियर ही बनना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में ही जाना है। मे बी आफ्टर अ ईयर उसको रियलाइज हो रहा है दो अलग चीजें हैं, एक है टफ है, तो हम उसको प्रोत्साहित करते हैं, कोई बात नहीं, कुछ साल की बात है, आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, हिम्मत रखो, हिम्मत नहीं छोड़ो। एक है उसको लगता है ये मेरा इंक्लिनेशन ही नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है,
1: सही बात है,
2: मुझे लगा था पर शायद ये मेरे पेरेंट्स का प्रेशर था,
1: कुछ हो सकता,
2: कुछ भी हो सकता है। दो अलग बात हो गई ना, एक है कि वो चीज डिफिकल्ट है
1: और दूसरा है कि किसी प्रेशर के कारण मैंने किया,
2: मुझे लगा कि नहीं ये राइट ही नहीं है, मेरा इसमें इंक्लिनेशन ही नहीं है, तो आपको लगा आपका डिसीजन गलत हो गया, इट इज ओके, इट इज ओके। उस समय पर आप चेंज करके उसको जो अब सही दिशा लगती है उसमें जाना चाहिए।
3: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अगर लिया हुआ डिसीजन गलत निकल जाए तो आगे क्या करें?
2: चलिए इसका रास्ता समझते हैं।

0: Stretch Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। एक सवाल आया सिस्टर श्रेया की। गुड मॉर्निंग विशाल और सिस्टर श्रेया, मैं संजय थाने से बात कर रहा हूँ, और मेरे बड़े भाई पिछले 10 सालों से बात नहीं कर रहे। वजह है बंटवारा। उसके चलते हर रोज सुबह मुझे उसके प्रति काफी नकारात्मक विचार आते हैं कि वो कभी सुखी नहीं रहेगा। मैं इस विचार से बाहर कैसे निकलूं?
2: जब आप ये विचार कर रहे हैं कि वो कभी सुखी नहीं रहेगा, तो एक्चुअली तो आप सुखी नहीं रह रहे हैं।
1: हाँ, यू हैव टू लेट गो फर्स्ट। सही बात है।
2: बिकॉज़ लुक एट द थॉट, जो आप सोचेंगे वो आप फील करेंगे।
1: बिल्कुल।
2: अब मैं सुबह सोच रही हूँ वो कभी सुखी नहीं रहेंगे, उनको जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा, उनके साथ गलत हो, ये मैं सोच रही हूँ।
1: सही बात है।
2: ये वो नहीं सोच रहे, ये मैं सोच रही हूँ।
1: हाँ।
2: तो दुखी कौन होगा?
1: मैं।
2: और मैं दुखी होंगी, फिर उसका इम्पैक्ट मेरे हेल्थ पर पड़ेगा, मेरे काम पर पड़ेगा, मेरी तकदीर के ऊपर पड़ेगा।
1: सही बात।
2: आप उनका नुकसान नहीं कर रहे, पहली चीज तो आप अपना नुकसान कर रहे।
1: क्या बात।
2: फिर आपका जब नुकसान होगा ना, तो हम पता क्या कहेंगे? पता नहीं मुझे किसकी नजर लग गई।
1: हाँ, उन्हीं की होगी।
2: उन्हीं की होगी।
1: हाँ, तो ब्लेम भी उन्हीं को करेंगे।
2: पर हम कौन किसको नजर लगा रहा है?
1: अपने आप को, खुद को, की विचार भी मेरे ही हैं।
2: रोज सुबह उठ करके अपने को नजर लगा रहे हैं। तो आपके साथ ही जीवन में कुछ गलत होना शुरू हो जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज स्टार्ट थिंकिंग राइट। चलो, हो गया बंटवारा, जो होना था हो गया, अब हम भी सुखी रहे।
1: हाँ।
2: वो भी सुखी रहे।
1: और द वेरी फैक्ट कि संजय आपने इसके बारे में सोचा और आप इसको बदलना चाहते हैं, आई थिंक आपने पहला कदम ले लिया है और आप आगे भी जरूर सफल होंगे।
2: कभी कभी हम बदलना नहीं चाहते, पर वो हमें जैसे कांटा चुभे जा रहा होता है ना।
1: हाँ।
2: अब वो चुभ रहा है, तकलीफ हो रही है, तो इसलिए भी ऐसा होता है मैं क्या करूं। पर आप जो कह रहे हैं वो जरूरी है। बदलेंगे नहीं, कांटे को निकालेंगे नहीं,
1: तो बदलाव,
2: कांटा तो आपको ही चुभ रहा है ना।
1: सही बात।
2: एवरी टाइम वी थिंकिंग नेगेटिवली फॉर समबडी एल्स, वी आर हार्मिंग
1: आवरसेल्व्स। ये समझना जरूरी है।
2: ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग समबडी एल्स टू डाई।
1: जी बिल्कुल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Gucci.
1: Never buy investments are subject to market risk. Read all skin related documents carefully.
2: Mirchi Mornings.
3: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
4: तुम्हारा अलार्म बज चुका है, कॉफी बन चुकी है, चाय चढ़ चुकी है, ब्रेकफास्ट की तैयारी हो चुकी है, लेकिन शो अभी अभी शुरू हुआ है। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। वेलकम टू द शो जो तुम्हारी लाइफ को थोड़ा सा ज्यादा मिर्चीदार बनाने वाला है। चाहे तुम फिलहाल ट्रैफिक में फंसे हो, सबवे पकड़ रहे हो, या फिर किचन में चाय के साथ अपनी लाइफ के पेंडिंग डिसीजंस प्रोसेस कर रहे हो, आई गॉट यू। अगले कुछ घंटों तक मैं और तुम साथ में रहने वाले हैं, बिकॉज मॉर्निंग्स आर बेसिकली लाइक इंडियन वेडिंग्स। काफी सारा केओस रहता है, थोड़ा बहुत ड्रामा भी हो जाता है, और बिना चाय के कुछ भी ऑफिशियली स्टार्ट ही नहीं होता है। तो अभी चाय के साथ थोड़ा सा बकल अप कर लो, क्योंकि अगले कुछ घंटों में वीव गॉट बॉलीवुड एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड अ लॉट ऑफ मिर्च मसाला एंड अ लॉट ऑफ रीजंस टू स्माइल, बिकॉज न्यूज तो यार फोन भी दे देता है, मैं तो उसे मिर्ची लगा कर देती हूँ तुम्हें। और अब मुझसे कनेक्टेड रहने का मन कर ही रहा है तो इंस्टाग्राम और एक्स पर मुझे फॉलो कर ही लो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। और व्हाट्सएप करना बिल्कुल मत भूलना 9033 मिर्ची पर, 9033647244 पर। अब चलाते कुछ मिर्चीदार बैंगर्स ओनली फॉर यू, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: तारीख पे तारीख ऐसे नहीं निकलने देते हम, बल्कि उस तारीख में क्या हुआ था हिस्ट्री पर ये पता करते हैं। मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब हम पता करेंगे कि आज की तारीख में क्या हुआ था। सबसे पहले 1666 लंदन में द ग्रेट फायर ऑफ लंदन स्टार्ट हुआ इन अ बेकरी ऑन पडिंग लेन। 4 दिनों तक ये फायर ने फुल ऑन मैं तो नहीं रुकने वाली हूँ एटीट्यूड दिखाया और सिटी का मैसिव पोर्शन डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड देन 1789 में द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय कांग्रेस। 1864 में यूनियन फोर्सेस अंडर जनरल विलियम टी शर्मन ऑक्यूपाइड अटलांटा ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर। एंड नाउ जंपिंग टू 1945, जापान फॉर्मली सरेंडर्ड अबाउट द यूएसएस मिसूरी इन टोक्यो बे, ब्रिंगिंग वर्ल्ड वॉर टू टू एन एंड। दैट सेम ईयर हो ची मिन डिक्लेयर्ड वियतनाम इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रांस एंड एस्टैब्लिश्ड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। एंड फाइनली 1946 में इंडियाज इंटरिम गवर्नमेंट टुक ऑफिस अंडर जवाहरलाल नेहरू एज द कंट्री मूव्ड टुवर्ड इंडिपेंडेंस। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, यू आर वेकिंग अप विद मिर्ची मॉर्निंग्स। फॉलो करो मुझे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Are you ke bada gori bhai? Baja.

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और मिर्ची मॉर्निंग्स पर अब टाइम हो चुका है वेदर अपडेट का, क्योंकि आउटफिट डिसाइड करना इज ऑलरेडी हार्ड इनफ। वेदर के हिसाब से अब सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट नहीं होनी चाहिए। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट 68 डिग्रीज फारेनहाइट, इट्स मोस्टली सनी, लेकिन अब हल्के हल्के क्लाउड्स जो है वो रोल इन कर रहे हैं। सो सनशाइन का आल बी बैक वाला वादा याद रखो। आज का टेम्परेचर रेंज विल बी फ्रॉम 67 टू 76 डिग्रीज फारेनहाइट, एंड हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। कल का हाई था 87 डिग्रीज फारेनहाइट, व्हाइल टुडे वी आर टॉपिंग आउट एट जस्ट 76 डिग्रीज फारेनहाइट, दैट्स एन 11 डिग्री का ड्रॉप। सो कल अगर तुम्हें फील हुआ था दैट यू आर बीइंग स्लो रोस्टेड, आज डेफिनेटली तुम्हें थोड़ा सा सुकून मिलने वाला है मौसम की वजह से। अब बरसात की हरकतें जरा देखो, कल तो हमें 42 मिलीमीटर्स की बरसात देखने को मिली, विच वॉज प्रिटी सीरियस फॉर 24 आवर्स, लेकिन आज पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगले 24 आवर्स आर लुकिंग मच कामर विद ओनली अराउंड 5 मिलीमीटर्स की बरसात एक्सपेक्टेड। एंड रिमेम्बर, 68 डिग्रीज फारेनहाइट डजंट ऑलवेज मीन 68 डिग्रीज फारेनहाइट, वो थोड़ा सा अलग फील होने वाला है। ह्यूमिडिटी, सनलाइट, विंड सब कुछ मिलाकर टेम्परेचर को थोड़ा सा डिफरेंट बना देते हैं, दैट इज योर फील्स लाइक टेम्परेचर। सो बिफोर यू स्टेप आउट, चेक द स्काई, चेक द फोरकास्ट, एंड मे बी चेक योरसेल्फ इन द मिरर, क्योंकि तुमने एसपीएफ 50 वाला सनब्लॉक लगाया है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा, लेयर के प्लेयर बनकर जा रहे हो कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा, और साथ साथ में ये चेक करना पड़ेगा कि तुम पूरे दिन भर के लिए पानी का जुगाड़ करके जा रहे हो कि नहीं। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, और मिर्ची की वाइब्स बनाकर रखो मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में। व्हाट्सएप कर सकते हो तो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244, या फिर इंस्टा और एक्स पर मुझसे कनेक्ट हो जाओ। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड राइट नाउ मिर्चीदार बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

है दिल, तेरी चाल ढाल हाल बाल सब बवाल सब गजब, तेरी चाल ढाल हाल बाल उफ़ो।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Welcome back to Mirchi Mornings ka hour number 2 with me Priscilla aur ab bari hai
2: Mirchi hour ka 3.
1: सबसे पहले एप्पल के न्यू सीईओ जॉन टर्नर्स का एनुअल बेस सैलरी पब्लिक किया गया है $3 million एंड दैट्स बिफोर वी इवन गेट टू द स्टॉक अवार्ड्स फॉर फिस्कल ईयर 2027 एप्पल हैज अप्रूव्ड $55 million का टारगेट इक्विटी अवार्ड विद 75% टाइड टू परफॉर्मेंस मतलब तुम्हारा अप्रेजल मेल व्हील सर्कल बैक होगा और जॉन टर्नर्स का अप्रेजल होगा हियर इज योर $55 million जस्ट सेइंग नंबर 2 पर गोल्ड स्टॉक took a hit after Prime Minister Narendra Modi urged Indians to avoid buying gold unless necessary. Many jewelers in India fell 5.76%, while finance companies also saw decline. And lastly, sports mein Babar Azam is trending for something completely different. Ahead of a meeting with King Charles, social media went into full meme mode over Babar's unusually jet black glossy hair with jokes about hair dye flying faster than cricket ball. And this comes while Pakistan cricket is already dealing with a turmoil with 7 players sent home mid-series. And that's your Mirchi Hour ka 3. Main hoon Priscilla. Follow karo mujhe Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris. And WhatsApp me 9033 Mirchi par. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La virtua la burka. Mirci, burka.
1: हेलो
2: हेलो, ये कमलेश जी?
1: हाँ जी, कौन?
2: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन सा पैसा चाहिए तुम्हें?
2: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उस पर पुताई होनी है।
1: देखिए,
2: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
1: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
2: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए का बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो।
1: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या, तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चंदा मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
2: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
2: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
3: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
1: with us? Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
3: It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
1: No, not an issue. 750 only?
3: Yes, sir, absolutely.
2: No, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam ghejne mein pad gayi.
0: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
4: Yeah, bhaiya.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Bala Banquet Edison.

0: गाना हॉट है। ये था गुची, संग बाय अरूप खान फीचरिंग रियाज अली, कंपोज बाय प्रीतिंदर, लिरिक्स बाय कप्तान एंड म्यूजिक बाय मिक्स सिंह। फुल ऑन मिर्ची बैंगर, इट्स हॉट। मिर्ची मॉर्निंग्स, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड आज अगर तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो अब सेलिब्रिटीज का रोल कॉल शुरू हो चुका है, लेकिन उसके पहले हैप्पी बर्थडे टू यू। आज है बर्थडे कियानो रीव्स का, द मैट्रिक्स एंड जॉन विक के लेजेंड एंड वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स एंड अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, सो आई हैव हर्ड। आल्सो जॉइनिंग द बर्थडे स्क्वाड टुडे इज सलमा हायक, द ऑस्कर नॉमिनेटेड स्टार ऑफ फ्रीडम। Sports fans, listen up. Terry Bradshaw, NFL Hall of Famer, tennis champion Jimmy Connors, boxing legend Lennox Lewis and NFL great Eric Dickerson are also celebrating today. Music mein baat ki jaye to Grammy winning DJ and producer Zedd ka bhi aaj happy wala birthday hai. Aur hamare desi squad ko kaise bhool sakte hain yaar, Telugu superstar and politician Pawan Kalyan bhi aaj hi janme the. Then we've got Kannada cinema ke superstar Kicha Sudeep. And then we've got 80s and 90s ki Bollywood actress Sonam Khan and filmmaker Partho Sen Gupta. To agar tumhara bhi aaj happy wala birthday hai to jam ke cake khao piyo aish karo, kyunki aaj ke din calories count nahi karti hai. Aur mujhe apne birthday shout outs bhej sakte ho 9033647244 par, aur mujhe follow kar sakte ho, Mirchi Pris is my handle name on Insta and X, that is MIRCHIPRIS. And abhi Mirchi dar bangers only for you, stay tuned and stay hot.

0: जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन। बुलावे तो

0: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और टाइम है अब गोल्ड रेट अपडेट का ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: RajJewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Today morning gold trading around $4,335, $4,335 per ounce के साथ इस हफ्ते गोल्ड के प्राइसेस पिछले हफ्ते से अबाउट $300 पर ट्राई आउंस डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं। अपॉर्चुनिटी बनती है टू इन्वेस्ट इन गोल्ड बाय 1 ounce, 10 ounce, 100 gram और किलो बार PAMS सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बॉल अवेलेबल एट RajJewels.com। आइए गोल्ड में रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करें RajJewels.com के साथ। थैंक यू
0: एंड देयर यू गो गोल्ड का लेटेस्ट रेट अपडेट मिर्ची मॉर्निंग्स पर एक्सक्लूसिवली। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। सुनते रहो मुझे और जाकर मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

टीना चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यू तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Cabana. Murga, murga. La viva la murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello. Anshika? ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
2: हाँ जी,
3: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
2: जी बताइए, इसका नाम क्या है?
3: संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
2: नहीं, कोई बात नहीं।
3: तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
2: संतोष क्या करता है? व्हाट डू यू
3: दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, and this is मिर्ची मॉर्निंग्स पर
2: मिर्ची राशि जोन।
1: सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि, मूड स्विंग्स को थोड़ा सा रिमोट पर रखो। इम्पल्सिव रिएक्शन मैरिज या क्लोज रिलेशनशिप में अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट कर सकता है। लकी कलर एमरल्ड ग्रीन, लकी नंबर इज 9। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज किसी एल्डर की एडवाइस गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। सुनो, अब्सॉर्ब करो और दिल को थोड़ा सा सुकून दो। लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 8। जेमिनी यानी मिथुन राशि, करेज इज योर सुपर पावर टुडे। बोल्ड माइंडसेट तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ को बूस्ट करेगा। बेसिकली कॉन्फिडेंस का वाईफाई फुल बार्स पर है। लकी कलर फॉर यू इज कोबाल्ट एंड लकी नंबर इज 3। कैंसर यानी कर्क राशि, एनर्जी लेवल्स हाई है। जो काम यूजुअली 2 घंटे लेता है आज टर्बो मोड में फिनिश हो सकता है। बस स्पीड में कॉफी टेबल से टकरा मत जाना। लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 6। लियो यानी कि सिंह राशि, ओल्डर फैमिली मेंबर्स की हेल्थ का थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ेगा, और जो पैसे सेफ हैं उनको बस एक छोटी सी शॉपिंग बोल के उड़ाना नहीं है। लकी कलर फॉर यू इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 1। एंड वर्गो यानी कन्या राशि, फाइनली परमिशन टू डू नथिंग। आज रेस्ट करो, रिलैक्स करो और टायर्ड मसल्स को रिकवरी टाइम दो। यूनिवर्स इज लिटरली सेइंग सोफा नाउ। लकी कलर इज सिल्वर, लकी नंबर इज 9। और ये था फर्स्ट 6 राशियों का राशि जोन। बाकी बची 6 राशियों को लेकर आती हूँ थोड़ी सी देर में। तब तक तुम सुनो ये मिर्ची देर बैंगर्स एंड फॉलो करो मुझे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
3: अब मिर्ची खा।
5: Radio Mirchi, it's hot.

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन है चाहिए टिकटे चाहे होने देना शोको ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स और आप सुनने वाले हो आज का राशि जोन।
2: मिर्ची राशि जोन
1: इरेज यानी कि मेष राशि, वर्क रूटीन में आज प्रोग्रेस दिखाई देगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आए तो स्माइल रखो बरकरार, बिकॉज अपेरेंटली स्माइल इज फ्री। लकी कलर फॉर यू इज क्रिमजन, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, जुपिटर और मून ऑप्टिमिज्म का बूस्ट दे रहे हैं, बस अनवांटेड थॉट्स को माइंड में परमानेंट एयरबीएनबी में मत डाल दो, रिलैक्स करो, ब्रीथ करो, मूव ऑन करो। लकी कलर इज मिंट ग्रीन, लकी नंबर इज 6। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज थोड़ा सा कॉशन रखना, डिस्ट्रैक्शन छोटी मिस्टेक्स या वर्क आउट ला सकते हैं। मल्टीटास्किंग के चक्कर में 17 टैब्स ओपन मत कर देना ब्रेन में। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 21। कैंसर यानी कर्क राशि, यू आर अंडर अ लकी स्पेल ऑफ होप एंड वार्मथ, कपल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग रहेगी और एक सिंपल जेस्चर भी स्पेशल मेमोरी बन सकता है। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 9। लियो यानी कि सिंह राशि, करिश्मा फुल वॉल्यूम पे है, सोशल और प्रोफेशनल सिचुएशन में सक्सेस मिल सकती है, बट अपने फेवरेट लोगों के लिए टाइम निकालना जरूरी है, सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी रिप्लाई करना इनफ नहीं होगा। लकी कलर इज मैरी गोल्ड, लकी नंबर इज 3। वर्गो यानी कन्या राशि, लर्निंग फोकस और कोलैबोरेशन के लिए आज का डे की है। सक्सेस आज लक से नहीं, कंसंट्रेटेड एफर्ट्स और टाइमली डिसीजन से मिलेगी, सो ओवरथिंकिंग को मीटिंग से पोलाइटली बाहर भेजो। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 18। लीब्रो यानी कि तुला राशि, मेंटल स्ट्रेस फाइनली थोड़ा सा हल्का होगा, वार्म कन्वर्सेशंस एंड गुड कंपनी ब्रिंग जेन्युइन जॉय। आज किसी अपने के साथ चाय और गॉसिप साइंटिफिकली नहीं बल्कि स्पिरिचुअली रिकमेंडेड। लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 11। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, फ्रेंड्स कीप योर स्पिरिट्स हाई एंड स्मार्ट आइडियाज को आज फाइनेंशियल गेन में टर्न करने का चांस है, स्पेशली थ्रू स्टेडी टीम वर्क। सोलो हीरो बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 27। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, फैमिली या किड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्ट्रेस मेल्ट करेगा, लेकिन प्लीज रशिंग से बचना, आज थोड़ा एक्सीडेंट प्रोन वाइब है, मतलब कि स्टेयर्स को फास्ट एंड फ्यूरियस ट्रैक मत समझना। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 8। केप्रिकॉन यानी मकर राशि, मून एंड वीनस करियर और फाइनेंसेस को स्पॉटलाइट में ला रहे हैं, पर्सनल बिलोंगिंग्स संभाल के रखो और इम्पल्सिव शॉपिंग से बचो, सेल देकर वॉलेट को आल हैंडल दिस मत बोल देना। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 16। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, मून एंड प्लूटो इमोशंस को इंटेंस बना सकते हैं, स्पेशली अराउंड वन बिग मिशन। Stay optimistic, surprise invitations could be coming your way. बस invite को accept करने से पहले location जरूर check कर लेना। Lucky color is electric blue, lucky number is 24. And last but not the least, Pisces यानी कि मीन राशि, financial gains का outlook strong है, लेकिन professional conversation में caution बनाए रखो, love में trust grow करेगा, बस unnecessary arguments को mute कर देना। हर बात का courtroom hearing जरूरी नहीं होता। Lucky color is sea green, lucky number is 5. And that was your Rashi zone for today. मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: ऑलराइट, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। इट्स मिर्ची मॉर्निंग्स का रैपिंग अप टाइम। लेकिन जाने से पहले तुम ये सुनो, एक न्यूयॉर्क के फार्मर है जिन्होंने ग्रो किए हैं पम्पकिंस, बट दे आर नॉट योर रेगुलर पम्पकिंस। इन्होंने पम्पकिंस को कस्टम प्लास्टिक मोल्ड्स में ग्रो किया है। अब तो बोलोगे इसमें कौन सी नई बात है, तो बहुत सारे फार्मर्स करते हैं, लेकिन ये मोल्ड्स दे आर शेप्ड लाइक डोनाल्ड ट्रम्प, यस, एंड ऑल्सो चकी, फ्रैंकेंस्टाइन एंड अ फ्यू अदर फेसेस। मतलब ये पम्पकिंस जो है ना, इन्होंने भी डिसाइड किया है कि भाई दुनिया में अगर रहना है तो फिर एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ रहना पड़ेगा और बड़े बड़े नामों के साथ रहना पड़ेगा। द पम्पकिंस वर स्टिल अटैच्ड टू द वाइन व्हाइल दे ग्रू इनसाइड दीज डिटेल्ड फेस मोल्ड्स। एंड एक बार पिक्चर जो इंटरनेट पर आ गया तो वायरल भी हो गया, लोगों ने अपने ऑनलाइन रिएक्शंस एकदम रेडी रखे थे। एक बंदे ने कहा है ये हैलोवीन रेडी हो चुके हैं। ऑनेस्टली हैलोवीन का डेकोरेशन का बजट जो है काफी लोगों का बच जाएगा। पम्पकिन ने खुद ही कैरेक्टर डेवलपमेंट कर लिया है। एंड दैट्स माय साइन ऑफ क्यू फॉर टुडे। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। फॉलो करो मुझे, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। एंड व्हाट्सएप अगर करना चाहते हो तो 9033647244 इज माय नंबर। अभी के लिए टाटा बाय बाय है, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। तब तक के लिए यू बी गुड, खाओ पियो ऐश करो एंड स्टे ट्यून्ड।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कहते हैं कि आपके दिल की खूबसूरती आपकी आवाज में छलक जाती है। पुरानी जीन्स पे हेलो वेलकम, मैं हूँ श्रेया और रफी साहब की इस खूबसूरत आवाज के पीछे जो खूबसूरत दिल था उसके बारे में बताती हूँ। यू नो ही वाज सच अ काइंड हार्टेड मैन और अपनी काइंडनेस को ना वो लोगों के सामने भी नहीं लाना चाहते थे। वो हमेशा हरफन मौला रहते थे लेकिन अंदर से वो काफी सेंसिटिव थे। सो, एक बार उनके घर के बगल में एक लेडी रहती थी। वो लेडी उनके हस्बैंड नहीं रहे और जब उनके हस्बैंड नहीं थे तो उनके पास ना रोज के पैसे के लिए किल्लत होने लगी। उनके पास पैसा ही नहीं था गुजारने के लिए। ये बात जब रफी साहब को पता चली तो रफी साहब ने उनको एक मनी ऑर्डर भेजना शुरू किया। लेकिन उन्होंने पोस्ट ऑफिस में जब ये काम शुरू किया तो वो एक अनोनिमस मनी ऑर्डर की तरह जाता था, यानी उनका नाम पता कुछ भी नहीं कि कौन ये मनी ऑर्डर भेज रहा है। ये मनी ऑर्डर रुकना तब शुरू हुआ जब रफी साहब नहीं रहे। तो भाई वो जो नेबर थी वो गई और उन्होंने पोस्ट ऑफिस में पता किया कि क्यों नहीं आ रहा है उनके पास वो पैसा। देन शी केम टू नो क्योंकि रफी साहब नहीं रहे और वो ही उन्हें ये पैसा भेजा करते थे। इमेजिन, रोंगटे खड़े हो गए ना, गूज बम्स। पुरानी जीन्स पे हेलो एंड वेलकम, श्रेया आ गई है। उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें इस जमाने की श्रेया के साथ चलते रहेंगे। तो गाने सुनकर के वापस आओ, आज का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो
4: जयदीप।
3: हाँ जी।
4: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना। ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था।
3: हाँ जी।
4: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या के यार दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो?
3: मतलब
4: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं।
3: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
4: मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं।
3: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो, उसको काम क्यों नहीं करेंगे?
4: क्या यूज करूं, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा।
3: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको।
4: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
3: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं, यूज कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की।
4: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा।
3: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा।
4: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस। ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा।
3: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी। अच्छा, तो खुलेगा।
4: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी, अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा। कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम। जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही।
3: तो कहाँ पे है तू?
4: बैंक में।
3: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
4: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर
3: है?
4: अपने हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ने।
3: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
4: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप?
3: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर, तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो।
4: ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ। ठीक है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

Zehreela Insaan movie se ye gana, which is picturized on Rishi Kapoor. It is sung by Kishore Da. Sunane wali kaun hai aapko purani jeans pe? Correct, aapki pyari Shreya. अच्छा सुनो ना, ये गाने के लिए ऋषि कपूर अड़ गए थे आरडी बर्मन के साथ, जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है. वो चाहते थे कि ये गाना उनके लिए शैलेंद्र जी प्लेबैक करें. ऋषि कपूर को लग रहा था कि शायद किशोर दा की आवाज ना उनके लिप सिंक के साथ जाएगी नहीं, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की भाई पंचम दास से कि प्लीज इसमें शैलेंद्र जी को ले लीजिए. लेकिन भाई आरडी बर्मन तो वही करते थे जो उन्हें सही लगता था. सो किशोर दा को लाया गया और क्या खूबसूरत रेंडिशन है ऑफ दिस प्रिटी प्रिटी ट्रैक ओ हंसिनी. पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया. और कौन कौन से गाने हैं? अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, आगे आगे सुनते जाओ, होगा क्या.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
5: हिट गाना।

only on Radio Mirchi, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म तेजाब बाय नितिन मुकेश, पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ। एंड इसी गाने के बाद होटल में हड़कम मच गया था। कोई एक तरफ पुलिस को बुला रहा था और कोई एम्बुलेंस को बुला रहा था। एक्चुअली हुआ ये कि ये गाने की शूटिंग ना लेट इन द नाइट हो रही थी, और जो फिल्म की कास्ट थी, यानी इस गाने की जो कास्ट थी, अनिल कपूर एंड द रेस्ट ऑफ द क्लैन, वो ना बिना अपना मेकअप ऑफ किए, बिना अपना मेकअप रिमूव किए एक होटल में पहुंच गए, क्योंकि उन्हें बहुत भूख लग रही थी। तो किसी के कहीं से खून निकल रहा है, किसी की आंख के पास ब्रूसेस आ रखे हैं, किसी के ऊपर पंचेस के निशान हैं, कोई जो है उसका मुंह पूरा कटा हुआ है। ये देख करके ना होटल वाले एकदम सदमे में आ गए थे। कोई पुलिस को फोन कर रहा था, कोई एम्बुलेंस बुला रहा था, कि तब उनको बताया गया नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे शूटिंग हो रही है, हम ना ये गाना सो गया ये जहाँ इसको शूट करके आए हैं, बस अभी मेकअप रिमूव कर देंगे, हम ठीक हो जाएंगे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, उस जमाने के गाने और बातें चलती रहेंगी। सो कम राइट बैक। और हाँ, अगर मुझसे कोई 1-to-1 बात करनी है तो ऑफ कोर्स 24/7 अवेलेबल हूँ। फेसबुक और इंस्टा आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल, RJ SHREYA विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

24 बार, 24 टाइम्स ये पिक्चर देखी थी, 24 टाइम्स एक कैरेक्टर देखा था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म अमर फ्रेम, जो कि शक्ति सामंत ने बनाई थी और राजेश खन्ना इसमें थे। राजेश खन्ना साहब ने ये जो कैरेक्टर था आनंद बाबू, ये 24 बार देखा था। कैसे देखा था? ओके, सो इस फिल्म को बनाया गया था एक बंगाली फिल्म के ऊपर। बंगाली फिल्म का नाम था निशी पद्मा और उसी फिल्म पे ये फिल्म अमर प्रेम बेस्ड थी। अब हुआ ये कि जब काका से कहा गया कि निशी पद्मा का फेमस एक्सट्रीमली पॉपुलर कैरेक्टर अनंता बाबू को आपको रेप्लिकेट करना है, तो उन्होंने आनंद बाबू करके इसमें अपना किरदार निभाया। लेकिन उससे पहले उन्होंने इस पिक्चर को, निशी पद्मा को, 24 बार देखा, एकदम खोल करके पी गए थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया और मुझे लगता है कलाकार चाहे जितना भी बड़ा हो, वो अपना होमवर्क करके जरूर आता है। फिर चाहे वो सेट पे करके आए, चाहे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में करके आए, चाहे कैमरे के पीछे आए, लेकिन हाँ, जो भी सक्सेसफुल हुआ है ना, उसके पीछे उनका होमवर्क बहुत सॉलिड रहता था। पुरानी जीन्स पे श्रेया के साथ हो, कम राइट बैक।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर.

इसी फिल्म से राम से ब्रदर्स ने शुरुआत की थी। पुरानी जीन्स पे आफर श्रेया के साथ ये जो गाना आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म बुड्ढा मिल गया। एंड दिस वाज द फिल्म जिससे कहानी लिखने की शुरुआत की थी राम से ब्रदर्स ने, श्याम राम से एंड तुलसी राम से। लेकिन जब आप फिल्म के क्रेडिट देखोगे तो उसमें राम से नहीं है, उसमें सिर्फ श्याम और तुलसी लिखा हुआ है। बट राइट आफ्टर दिस फिल्म इन दोनों ने इंडिया को डराना शुरू कर दिया था। बोलो कैसे? क्योंकि रामसे ब्रदर्स वर नोन फॉर द हॉरर फिल्म्स। सो इसी फिल्म के बाद उन्होंने बनाई थी दो गज जमीन के नीचे, 1970s की ये अच्छी खासी डरावनी फिल्म थी। और उसके बाद रामसे ब्रदर्स ने तो ओहो लड़ी छड़ी लगा दी थी भाई डरावनी फिल्मों की। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: हेलो
3: ये कमलेश जी।
2: हाँ जी कौन?
3: कमलेश जी गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने लाजवंती ने वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
2: कौन से पैसे दिए तुम्हें?
3: नहीं देखिए एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब उसकी बाहर की दीवार देखो उसमें पुताई होनी है।
2: देखिए
3: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
2: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
3: भाई साहब एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए का बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो।
2: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई कहानी है कोई फसल है तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चंदा मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
3: आप नहीं दे रहे फिर?
2: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
3: ना दे रहे लाजवंती ना मान रहे।
4: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for. Because we feel we're all family. And my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
2: there? Yes, madam, I'm there. I understand, मैं समझ रहा हूँ आपको. What is the amount?
4: Sir, it's 750 rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
2: No, not an issue. 750 only?
4: Yes, sir, absolutely.
3: Na, 750 na, bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na rahi. Lajwanti ki ekdam gheje mein pad gayi.
0: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
5: Yeah, paja.
0: Aap sun rahe hain Purani Jeans. श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये फिल्म इतने लोगों का डेब्यू थी, इतने लोगों का फर्स्ट थी, एंड सबके लिए इस फिल्म ने कमाल किया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, ये गाना फ्रॉम द फिल्म ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट QSQT कयामत से कयामत तक। अच्छा, इस फिल्म से अपना डेब्यू किया आमिर खान ने एंड जूही चावला ने, आगे क्या हुआ रेस्ट इज हिस्ट्री। इसी फिल्म से अपना डेब्यू किया उदित नारायण ने, आजकल को छोड़ दो तो बाकी क्या हुआ वी ऑल नो। एंड इसी फिल्म से अलका याग्निक भी आई। उदित नारायण और अलका याग्निक का ये जो डुएट जोड़ी थी ना, ये कितनी पॉपुलर हुई दैट ऑल ऑफ अस नो। इसी फिल्म से भाई आनंद मिलन की जोड़ी ने भी कदम रखा था एज म्यूजिक कंपोजर्स एंड दे डिड वंडर्स। सो ये जो फिल्म थी QSQT सबके लिए लकी चार्म थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, उस जमाने के गाने बातें इस जमाने की श्रेया के साथ चलते रहेंगे। सो कम राइट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिर पता है क्या हुआ, सबसे ज्यादा हार काका की फोटो पे चढ़े पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म नमक हराम। तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही थी कुछ गानों के पहले, और मैंने कहा था कि वापस आओगे तो पूरी कहानी बताऊंगी। अब होता यह है कि नमक हराम जो ऋषिकेश मुखर्जी बना रहे थे, इसमें दोनों स्टार्स एक साथ दूसरी और आखिरी बार आए, यानी राजेश खन्ना एंड अमिताभ बच्चन। Now what happened was कि काका उस समय सुपरस्टार थे और अमिताभ बच्चन बस अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। उनके ऑलरेडी काफी सारी फ्लॉप पिक्चर्स हो चुकी थी, बीच में काका की भी कई सारी फ्लॉप पिक्चर्स आ चुकी थी। अब काका ना अपने ऑन स्क्रीन मरने से काफी ऑब्सेस थे। उनको लगता था फिल्म्स लाइक आराधना, फिल्म्स लाइक यू नो सफर एंड ऑफकोर्स आनंद इसलिए वर्क्ड बिकॉज उनका कैरेक्टर डाइड ऑन स्क्रीन, जिसकी वजह से उन्हें ऑडियंस से काफी सिंपथी मिली और मूवी हिट हो गई। तो काका चाहते थे, राजेश खन्ना चाहते थे कि इस फिल्म में भी, नमक हराम में भी, उनका कैरेक्टर ऑन स्क्रीन मर जाए। अब भाई ऋषिकेश दा ने कहा कि इस बार उनका कैरेक्टर नहीं बल्कि बच्चन साहब का विक्की जो है ना वो मरेगा ऑन स्क्रीन। काका ये बात कैसे हजम कर लेते? उन्होंने 2 घंटे की मीटिंग करी और ऋषिकेश दा को बस ये कहा कि नहीं काका, मुझे मेरी एक अच्छी हिट फिल्म चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारी फ्लॉप पिक्चर्स दी हैं, मेरे कैरेक्टर को ऑन स्क्रीन मरना चाहिए, मेरे कैरेक्टर को। तो ऋषिकेश दा ने कहा अच्छा चलो भाई एक काम करते हैं, कल तुम और अमिताभ, अमित कहते थे वो बच्चन साहब को, कल तुम और अमित दोनों 8 बजे सुबह सेट पे आ जाना अपनी अपनी एक फोटो लेकर के। दोनों लोग फोटो लगा देना और सेट पे जितने लोग, पहले उन्होंने ना एक्चुअली ये आइडिया नहीं दिया, जब ये दोनों अपनी अपनी फोटो लेकर के सुबह 8 बजे आ गए तो ऋषिकेश ने सडनली अनाउंस किया कि सेट पे जितने भी लोग हैं वो किसी एक फोटो पे हार चढ़ाएंगे, और हार चढ़ाने का मतलब ये होगा कि ऑन स्क्रीन वो कैरेक्टर इस फिल्म में मरेगा। आपको पता है सबसे ज्यादा हार ऑफकोर्स राजेश खन्ना की फोटो पे चढ़े। एंड देन जब आप ये पिक्चर देखोगे ना आपको लगेगा है राजेश खन्ना का कैरेक्टर का कोई लेना देना ही नहीं है मरने से, फिर भी ऑन स्क्रीन ही डाइज। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और अगला जो गाना आ रहा है ना, इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ। पहले गाना सुनो, ये वाला गाना है ना, रोज रोज आंखों तले,
1: रोज रोज आंखों।
0: ये गाना है फ्रॉम द फिल्म जीवा, और इस फिल्म में थे संजय दत्त और मंदाकिनी जी। ठीक है, इस गाने को गाने वाली हैं आशा ताई और अमित कुमार। अब हुआ ये कि इस गाने का सिर्फ फीमेल वर्जन होना था, और वो ऑफ कोर्स मंदाकिनी जी पे पिक्चराइज था, लेकिन गाने में साथ में संजय दत्त भी थे। तो ये गाना जब शूट होने लगा, संजय दत्त को लगा कि इतना खूबसूरत गाना है और मैं इस गाने में कुछ कर क्यों नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ मंदाकिनी के अगल बगल घूम रहा हूँ। तो वो गए पंचम दा के पास, आरटी परमन के पास, इन्होंने ये गाना कंपोज किया, और उन्होंने कहा कि भाई इस गाने में मुझे भी कुछ लाइंस दे दो, मैं भी कुछ गुनगुना लूं। तो फिर आरटी परमन ने कहा कि ठीक है, किशोर को बुलाते हैं और किशोर कुमार से इस गाने की कुछ लाइंस गवाते हैं। जब वो प्रोड्यूसर के पास गए तो प्रोड्यूसर ने कहा ना ना ना भाई, हमारे पास फिल्म का बजट इतना नहीं है कि हम किशोर कुमार को ला करके इस गाने की कुछ लाइन्स गवाएं। सो ही रिफ्यूज्ड। फिर भाई पंचम दा आरडी बर्मन साहब लेकर के आए अमित कुमार को। ये जो गाना है वो आशा ताई और अमित कुमार ने एक साथ गाया। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, रोज रोज आंखों तले। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पहली फिल्म और बेस्ट म्यूजिक कंपोजर का अवार्ड लेकर। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और अगला जो गाना है इस फ्रॉम द फिल्म जूली। इस फिल्म के गानों के साथ आज म्यूजिक कंपोजर पहली बार कदम रख रहे थे राजेश रोशन। एंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऐसा हुआ कि कोई म्यूजिक कंपोजर पहली बार यानी पहली ही फिल्म के गाने कंपोज करने के लिए अवार्ड ले गए इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, एंड दैट वाज राजेश रोशन फॉर जूली। अब उन्होंने अवार्ड कब जीता? 25 साल के बाद फिर से, व्हेन ही मेड द म्यूजिक ऑफ कहो ना प्यार है। सो आई फील कि मतलब ये इयर्स, ये साल म्यूजिक के लिए ना कुछ नहीं होते। अगर आप म्यूजिक कंपोज कर लेते हो, अगर आपको स्वर का ज्ञान है, अगर आपको धुनों से प्यार है बेसिकली, तो फिर चाहे वो 25 साल पहले हो या 25 साल बाद हो, ऑडियंसेस को पसंद आएगा। वेल, राजेश रोशन का कंपोज डे गाना फ्रॉम द फिल्म जूली कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो अंशिका, ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्री मॉल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्री मॉल पे डाल रखा है, तो
3: हाँ जी,
4: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
3: जी बताइए,
5: इसका नाम क्या है?
4: संतोष। संतोष
3: संतोष
4: संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
3: नहीं, कोई बात
4: नहीं। तो मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
3: संतोष क्या करते हो? व्हाट डू यू
4: I am entrepreneur. दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

नासिर हुसैन जिन्होंने ये फिल्म बनाई, उन्होंने कभी भी बच्चन साहब के साथ फिल्म नहीं बनाई, लेकिन वो तहे दिल से चाहते थे कि बच्चन साहब उनकी एक फिल्म में काम करें। इस फिल्म यादों की बारात में इट वाज ऑलमोस्ट तय कि बच्चन साहब होंगे लीड रोल में, लेकिन फिर बीच में आ गए कौन, बताती हूँ। पुरानी जीन्स पे हाय, दिस इज मी श्रेया। उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। सो बीच में आ गए हमेशा की तरह फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, एंड क्योंकि बच्चन साहब जंजीर से पहले एक फ्लॉप एक्टर माने जाते थे, उनकी सारी फिल्में फ्लॉप होती थी, तो उन्होंने ना ये कह के साफ मना कर दिया कि वो इस फिल्म यादों की बारात में पैसे ही नहीं लगाएंगे अगर नासिर हुसैन साहब ने अमिताभ बच्चन जी को लिया। इसीलिए उनको बच्चन साहब को ड्रॉप करना पड़ा और विजय अरोड़ा को लेना पड़ा। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
5: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
6: अरे हे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

महमूद साहब के प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी ये पड़ोसन, जिसका गाना भी आपको सुनाया श्रेया ने, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। अच्छा सुनो ना, ये जो फिल्म थी ना, ये महमूद साहब के प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी, तो उनका सारा पैसा लग रहा था। गुरु साहब को उन्होंने लिया था एक रोल में। गुरु साहब अपने टाइम के नामी गिरामी हीरो थे, बट ही पास्ड अवे। सो फिर यही रोल लेकर के वो सुनील दत्त साहब के पास गए। ही वॉज नॉट श्योर कि सुनील दत्त ये रोल करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि सुनील दत्त उस समय ना काफ़ी सीरियस रोल्स कर रहे थे, और पड़ोसन फिल्म का ये रोल काफ़ी कॉमेडी वाला रोल भी था। बट जब सुनील दत्त साहब ने ये रोल सुना, उन्हें इतनी पसंद आई स्क्रिप्ट, अपना कैरेक्टर, के उन्होंने फ़ौरन हामी भर दी पुरानी जीन्स पे। इसी फिल्म का गाना आपको सुनाया मैंने, अब लता जी का ही गाना रहे, सुन करके वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ जाने का टाइम, सो लेट्स हिट द हाईवे। ऑलराइट, तो आज का मेरा हाईवे हिट मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ कोई ऐसा जो हवा के साथ साथ घटा के संग संग आपका हाथ पकड़ के चलता रहे बस। मेरी नजर में तो आप ही हो मेरे लिए, तभी तो रोज रात में जाने से पहले हाईवे पे लेके जाती हूँ आपको। Alright, on that note, if you miss me, if you want to say something, if you want to complain about anything, Facebook or Insta, my handle is RJ Shreya with love. That's RJ SHREYA, Shreya with love. On that note, good night. Take care.

0: समय रैना फैंस कृपया ध्यान दें।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप एंड आई एम 110% श्योर इस इंसान का नाम सुनते ही आपके कान खड़े हो गए होंगे, आपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा दिए होंगे, तो प्लीज सुन भी लो कि क्या ही चर्चा करने वाली हूँ। सो आपको समय का वो कमबैक एक्ट तो याद होगा, स्टिल अलाइव एंड स्पेशली द मैन आउट देयर जो समय के उस सेट के बाद अपने पापा को आई लव यू बोल रहे थे। वेल, आपके लिए डायरेक्टर हरीश व्यास जो हैं वो एक फिल्म लेकर आ रहे हैं और इसका नाम है हरिओम। नहीं नहीं, नाम पे मत जाइएगा, कोई भक्ति वाली मूवी नहीं है ये। बट इस फिल्म का इमोशनल कोर है द टाइमलेस टग ऑफ वॉर जो फादर सन के इस ओल्डेस्ट राइवलरी में नजर आती है। इनफैक्ट इस कहानी के जरिए एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने की कोशिश भी की गई है कि भाई कैसा होता अगर हम अपने पापा को बता पाते कि भाई हम उनसे कितना प्यार करते हैं एंड वाइस वर्सा। सो द बैक स्टोरी इज दैट इस फिल्म के साथ डायरेक्टर हरीश व्यास अपनी ट्रिलॉजी कंप्लीट कर रहे हैं। सो उन्होंने अपना फीचर फिल्म डेब्यू किया था विद अ मूवी अंग्रेजी में कहते हैं, और इस फिल्म में संजय मिश्रा के साथ साथ पंकज त्रिपाठी, एकावली खन्ना और अंशुमन झा भी नजर आए थे, जहां एक रिलेशनशिप में आई लव यू बोलने की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लोर किया गया। कई दफा हमने देखा है कि रिलेशनशिप को अगर काफी टाइम हो जाता है तो लोग एक दूसरे को आई लव यू बोलना भूल जाते हैं, ये सोच के कि यार उसको तो समझ में आता ही है क्या है क्या नहीं है। बट एक्चुअली दैट मूवी रिमाइंड्स यू कि प्यार को सिर्फ अज्यूम नहीं किया जा सकता, इट नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड। और उसके बाद आई थी उनकी दूसरी फिल्म दैट इज हम भी अकेले एंड तुम भी अकेले, जिसका बैकड्रॉप भी कुछ ऐसा सा ही था। सो इन शॉर्ट, अगर आपको अच्छी स्टोरी टेलिंग पसंद है, अगर आप ऐसे टॉपिक्स को एक्चुअल में एक्नॉलेज करते हैं, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच हरिओम जो रिलीज हो रही है ऑन द 18th of September, वो भी थिएटर्स में। एंड सीरियसली यार, इट्स हाई टाइम जब हम अच्छे डायरेक्शन, अच्छी कहानी को अप्रिशिएट करना शुरू करें। ये नहीं कि बस बड़े नाम हो मूवी में, बड़ा बजट हो तो हम उसको ही सपोर्ट करेंगे। बाकी तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, बच्चे को गुब्बारा काफी और समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Energy.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na viva la burga. Energy, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Yeah, Jadeep.
2: हाँ जी.
3: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना. ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था.
2: हाँ जी.
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो.
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं.
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए हाँ
3: तो नहीं है आपको? मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेगा जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं.
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो, उसको काम क्यों नहीं करेंगे?
3: क्या यूज करूं, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा.
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको.
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
2: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज, कभी किसी ने कंप्लेन
3: नहीं
2: की.
3: काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा.
2: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा.
3: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस. ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा, नहीं खुल रहा. पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा.
2: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना, तभी तो खुलेगा.
3: हथौड़ा जोर से मार दो, सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी. अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा. चीजें बेचते हो, गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ. 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा. कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम. कर लिए काम, जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही.
2: तू कहाँ पे है? तू
3: बैंक में.
2: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
3: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर
2: है?
3: अपने हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ने.
2: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
3: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप?
2: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो करना है कर. तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना.
5: हिट गाना.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। नेटफ्लिक्स एक बार फिर से लेकर आ रही है अपनी ये एंथोलॉजी सीरीज का नया चैप्टर। आई एम टॉकिंग अबाउट लस्ट स्टोरीज, जिसका पार्ट 3 आने वाला है, आई मीन सीजन 3, 18th ऑफ सितंबर को। एंड नॉट टू मेंशन, दिस इज एन इंटरनेशनल एमी नॉमिनेटेड एंथोलॉजी सीरीज, जिसमें एक नहीं चार डायरेक्टर्स अपनी चार अलग अलग कहानियां लेकर आते हैं, विच इंक्लूड्स विक्रमादित्य मोटवानी, किरण राव, शकुन बत्रा एंड विशाल भारद्वाज। और ये चारों एक बार फिर से लस्ट, लव और रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं विद न्यू स्टोरी लाइंस, जिसके बारे में डिटेल्ड बातचीत बाद में होगी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा 5 सालों से एक फिल्म डेवलप कर रहे हैं एंड उसका नाम है कर्ण, जो फाइनली अगले साल से शूट होगी, दैट टू फ्रॉम अगस्त। दिस इज गोइंग टू बी अ 2 पार्ट्स फिल्म, जिसका लीड निभाने वाले हैं नन अदर देन सलमान खान एज द वॉर हीरो कर्ण। महाभारत के मोस्ट कॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर कर्ण के ऊपर बन रही है ये फिल्म। बट हेलो हेलो, उसके पहले राकेश ओम प्रकाश मेहरा एक क्विक 30-day फिल्म भी बना रहे हैं, विच इज गोइंग टू बी अ स्मॉल टाउन लव स्टोरी, और उसको लीड करने वाले हैं नन अदर देन विक्रांत मस्से। लीजिए, आफ्टर मंथ्स ऑफ स्पेकुलेशंस, फाइनली बादशाह और ईशा रिखी ने अपने सेपरेशन को कंफर्म कर दिया है। द कपल सेड कि उन्होंने ये डिसीजन म्यूचुअली लिया है एंड ऑफ कोर्स दे वांट सम प्राइवेसी। देखो, इससे ज्यादा डेट्स तो इन जनरल किसी को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो कदम उठाते हैं तो भैया आपके घर में वो चाचा फूफा फूफी है ना, बस उनका ही किरदार निभा रहे हैं आप रियल लाइफ में। बाकी तो जैसे बच्चे को गुब्बारा काफी, वैसे समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Bala Banquet Edison.

0: मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो, मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ। आप अपने दिमाग के घोड़ों को किधर किधर दौड़ा रहे हो यार, जरा लगाम लगाइए। बेसिकली द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाकर अपना नंबर डीएम करना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। इनफैक्ट कभी कभी कुछ लोगों को कॉल करने पे वो तो फोन भी नहीं उठाते यार, आई गेस नंबर थोड़ा वियर्ड सा होता है, इसलिए आपको लगता है कि ये तो बस वो वाला कॉल होगा जिसको इग्नोर करना है। बट एनीवे, आज मैंने कॉल लगाया है नितिन जी को, एंड आई गॉट टू नो कि वो हैदराबाद हाल फिलहाल शिफ्ट हुए हैं बैंगलोर से, बट ओरिजिनली ये हमारे यहाँ से आते हैं। बोले तो बिहार पटना का कनेक्शन है भैया। तो नितिन जी, मिर्ची फिल्म ची बनने के लिए तैयार हैं आप?
3: यस श्योर।
0: तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड की फिल्म जिसमें 8 साल के बच्चे को डिसलेक्सिया होता है,
3: तारे जमीन पर।
0: हाँ जी, तारे जमीन पर में ईशान अवस्थी के फेवरेट टीचर कौन है?
3: आमिर खान।
0: आमिर खान की फिल्म जिसमें वो लड़की को खंडाला बुलाते हैं,
3: गुलाम।
0: यस, गुलाम में हीरोइन कौन है?
3: रानी मुखर्जी।
0: रानी मुखर्जी की फिल्म जिसमें वो चोर बनती हैं,
3: बंटी एंड बबली।
0: हाँ जी, बंटी और बबली में पुलिस ऑफिसर कौन है?
3: पुलिस ऑफिसर अमिताभ बच्चन।
0: यस, अमिताभ बच्चन की फिल्म जिसमें वो सड़ू प्रिंसिपल बने हैं,
3: मोहब्बतें।
0: मोहब्बतें में किस हीरो को एक विधवा से प्यार हो जाता है?
3: जिमी शेरगिल।
0: हाँ जी, जिमी शेरगिल की फिल्म जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड कंगना रनौत थी, सही जा रहे हैं आप। बस काश कि मैं गाना गेस करने पे आपको ये नंबर दे देती, बट कोई नहीं, आपने इस गेम को बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचाया है, इसलिए आप बने हैं हमारे आज के पहले
1: मिर्ची फिल्म ची।
0: तो रेडियो के उस पार जो भी सुन रहा है फिलहाल, अगर आप इस गेम का हिस्सा बनना चाहते हैं, देन यू नो द ड्रिल। मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे अपना नंबर भेजिए। रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
5: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: मैं तो मिर्ची फिल्म ची गेम खेलने की बात कर रही हूँ। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर डीएम करना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे हैदराबाद से हैं विवेक जी। तो क्या तैयार हैं आप?
3: यस यस।
0: ऑल राइट, मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ, कोई भी आके बजा जाता है, मंदिर का घंटा कौन है?
3: राजपाल यादव।
0: राजपाल यादव किस फिल्म में गुल्लू कैब वाला बने हैं?
3: भागम भाग।
0: भागम भाग में एमजी गांधी किसकी सुटाई करते हैं?
3: किसकी पिटाई करते हैं?
0: हाँ,
3: ये परेश रावल को।
0: परेश रावल किस फिल्म में भगवान के ऊपर केस करते हैं?
3: ओ माई गॉड।
0: ओ माई गॉड में भगवान के लंबे बाल वाले मैनेजर कौन है?
3: मिथुन चक्रवर्ती।
0: मिथुन चक्रवर्ती किस फिल्म में अपने जवानी के प्यार से बुढ़ापे में शादी करते हैं?
3: गोलमाल थ्री।
0: गोलमाल थ्री में पप्पी भाई कौन है?
3: जॉनी लिवर।
0: जॉनी लिवर रोड रोलर किस फिल्म में चलाते हैं?
3: खट्टा मीठा।
0: क्या बात है, खट्टा मीठा में रोड कॉन्ट्रैक्टर कौन है?
3: अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार किस फिल्म में नकली अंडरटेकर से लड़ते हैं?
3: खिलाड़ियों का खिलाड़ी।
0: क्या बात है, खिलाड़ियों का खिलाड़ी में मैडम माया कौन है?
3: रेखा।
0: रेखा की फिल्म जिसमें उनका बेटा एलियन से कॉन्टैक्ट करता है?
3: कोई मिल गया।
0: कोई मिल गया में चॉकलेट मिल्क किसको पसंद है?
3: ऋतिक रोशन।
0: ऋतिक रोशन किस फिल्म में एक पल का जीना फिर तो है जाना करते हैं?
3: कहो ना प्यार है।
0: कहो ना प्यार है में सोनिया सक्सेना कौन है?
3: अमीषा पटेल।
0: अमीषा पटेल की फिल्म जिसमें उनको ट्रक ड्राइवर से प्यार हो जाता है?
3: गदर।
0: गदर में हैंडपंप कौन उखाड़ता है?
3: सनी देओल।
0: सनी देओल की फिल्म जिसमें वो स्पाई बने हैं?
3: हीरो।
0: क्या हीरो में एक्चुअल लव किससे होता है उनको?
3: प्रीति जिंटा।
0: प्रीति जिंटा की लिव इन रिलेशनशिप वाली फिल्म
3: सलाम नमस्ते।
0: सलाम नमस्ते में वो किसके साथ लिव इन में है?
3: सैफ अली खान।
0: सैफ अली खान किस फिल्म में अपनी बेस्टी से प्यार करते हैं?
3: कल हो ना हो।
0: कल हो ना हो में टर्मिनल इलनेस किसको है?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख की फिल्म जिसमें वो अपनी बंदी को बिल्डिंग से धक्का मार देते हैं?
3: बाजीगर।
0: बाजीगर में मरने वाली बंदी की बहन कौन है?
3: काजोल।
0: काजोल किस फिल्म में तुस्सी बड़े मजाकिया हो करती है?
3: कभी खुशी कभी गम।
0: सर कहीं तो रुक जाओ यार, कभी खुशी कभी गम में लड़कों को रेटिंग कौन देता है?
3: करीना कपूर।
0: करीना कपूर की फिल्म जिसमें वो एक छोटी बच्ची को बॉर्डर क्रॉस कराती हैं?
3: बजरंगी भाईजान।
0: बजरंगी भाईजान में मुन्नी को अपनी पीठ पे कौन लेके चलता है?
3: सलमान खान।
0: सलमान खान किस फिल्म में एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर किसी की नहीं सुनते?
3: वांटेड।
0: क्या बात है, आई गेस यू ऑल्सो वॉन्टेड द टैग सो बैड कि एक गो में ही आपने ये गेम कम्प्लीट कर लिया। तो इसी बात पे आप बने हैं आज के हमारे
1: मिर्ची फिल्मची।
0: वैसे आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को ना फोमो फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गेम एक बार फिर आएगा कल, बट उसके अलावा दो और गेम्स यहाँ अभी बाकी हैं। मैं हूँ श्रुति आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Mirchi, burga. हेलो
2: हेलो, ये कमलेश जी?
1: हाँ जी, कौन?
2: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन से पैसे दिए तुम्हें?
2: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
1: देखिए,
2: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
1: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
2: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए का बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो।
1: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या, तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चलना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
2: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
2: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
3: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time to 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
1: with us? Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
3: It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
1: No, not an issue. 750 only?
3: Yes, sir, absolutely.
2: Nah, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam ghejne mein pad gayi.
0: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
4: Yep, Murga.
5: Tera kya hoga, Kalia?
6: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
5: Ab... मिर्ची का
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ऐसी अप्रोच वाली फिल्में हमारी इंडस्ट्री में और आनी चाहिए।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ जी बाबू मोशाय, मैं बात कर रही हूँ फीमेल सेंट्रिक इश्यूज को लेकर बनी फिल्मों के बारे में, जिसकी कमी ऑफ कोर्स हमारी इंडस्ट्री में है। बट आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं आपके वॉच लिस्ट में कुछ अमेजिंग शॉर्ट फिल्म्स ऐड करने वाली हूँ विच रिवॉल्व अराउंड विमेन सेंट्रिक इश्यूज। सो सबसे पहले इन द लिस्ट वी टॉक्ड अबाउट द मूवी चटनी। अब नंबर दो पे बात करते हैं द ब्रोकन टेबल के बारे में, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2023, डायरेक्टेड बाय चिंतन सारदा। एंड इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह है एज गिरी और उनके साथ है रसिका दुग्गल हु इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ दीप्ति इन द मूवी। सो बेसिकली गिरी का जो कैरेक्टर है ही इज एन अल्जाइमर पेशेंट जो अपनी जिंदगी की सारी चीजें भूल जाते हैं अदर देन हिज वाइफ। वहीं दूसरी तरफ दीप्ति इज अ बडिंग साइकोलॉजिस्ट जिसकी लाइफ में उसकी शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही हैं। बट वंस शी मीट्स गिरी वो उनकी जिंदगी से बहुत सारी ऐसी चीजें सीखती है, अपने लाइफ में इनकलकेट करती है, जिसके बाद इस मूवी का एंड बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग लगता है। नहीं देखी है मूवी तो अपने वॉच लिस्ट में इसको जरूर डाल लो। नाम है द ब्रोकन टेबल। चलो नंबर तीन पे अब बात करते हैं अबाउट द फिल्म नीति शास्त्र, जो प्राइम वीडियो पे आपको मिलेगी। दिस मूवी रिलीज इन द ईयर 2018, जिसमें तापसी पन्नू है, विकी अरोड़ा है और ये फिल्म एक सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर की है, रोशनी है इसका नाम, प्लेड बाय तापसी पन्नू ऑफकोर्स, जो औरतों को मदद करती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने में। हाउएवर इसकी जिंदगी एकदम से उथल पुथल हो जाती है जब इसका खुद का सगा भाई एक क्राइम कमिट करता है एंड देन शी इज टोर्न बिटवीन हर इंटेग्रिटी एंड हर फैमिली। इंट्रीगिंग राइट? तो अपनी वॉच लिस्ट में नीति शास्त्र को भी जरूर ऐड कर लेना। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बाकी के दो फिल्मों को डिस्कस करेंगे राइट हियर ऑन मिर्ची। यू आर ट्यून्ड इन विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: भाईला हमारी इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में भी हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ जी बाबू मोशाय, कुछ ऐसा ही रिएक्शन आया था मेरा जब मैंने ये फिल्में देखी थी। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट 5 वुमेन सेंट्रिक इश्यूज पे बेस्ड शॉर्ट फिल्म्स जिन्होंने मुझे एकदम से झकझोर दिया था। तो चलो लिस्ट को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी चटनी, उसके बाद हमने नंबर 2 पे बात की द ब्रोकन टेबल के बारे में, नंबर 3 पे था नीति शास्त्र, अब नंबर 4 पे बात करते हैं एवरीथिंग इज फाइन के बारे में। वेल दिस मूवी रिलीज्ड इन द ईयर 2017, जो फिलहाल आपको प्राइम वीडियो पे देखने को मिलेगी। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है मानसी निर्मल जैन ने, जिसमें सीमा पाहवा हैं और पालोमी घोष जैसे अमेजिंग एक्टर्स हैं यार। सो बेसिकली फिल्म में एक मिडिल एजेड वुमन है जिसका नाम है आशा, जो अपने अनहैप्पी मैरिज को खत्म करना चाहती है और अपनी बेटी के पास जाती है जिसका नाम है नताशा फॉर सपोर्ट। हाउएवर उनकी बेटी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि भाई उसकी माँ अपनी शादी खत्म करना चाहती है, एंड दस ट्राइज टू डिसवेड हर फ्रॉम डूइंग इट। ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट इज अ मस्ट वॉच। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 पे बात करते हैं अबाउट द फिल्म देवी, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2020, और इस मूवी को डायरेक्ट किया है प्रियंका बैनर्जी ने, जो आपको Amazon Prime पे देखने को मिलेगी। फिल्म में है काजोल, श्रुति हासन, नेहा धूपिया, नीना कुलकर्णी, मुक्ता बारवे, शिवानी रघुवंशी, यशस्विनी दयामा, रमा जोशी एंड संध्या महात्रे। सो बेसिकली इस फिल्म में एक ग्रुप ऑफ वुमेन को फोर्स किया जाता है टू को एग्जिस्ट इन अ स्मॉल रूम, एंड माइंड यू ऑल ऑफ देम आर विक्टिम ऑफ रेप। और जिस तरीके से हर एक औरत की कहानी इस मूवी में बयां की गई है, गूज़बम्स इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट व्हाइल वॉचिंग इट। खैर मेरी इस लिस्ट में अगर आप भी कोई फीमेल सेंट्रिक इश्यूज को डील करती हुई फिल्म ऐड करना चाहो, then feel free to do that. MIRCHISHRUTI, that is Mirchi Shruti ke naam se main aapko Facebook ya fir Insta pe milungi. In the meantime, stay tuned to Mirchi, it's hot.

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। नेटफ्लिक्स एक बार फिर से लेकर आ रही है अपनी ये एंथोलॉजी सीरीज का नया चैप्टर। आई एम टॉकिंग अबाउट लस्ट स्टोरीज, जिसका पार्ट 3 आने वाला है, आई मीन सीजन 3, 18th ऑफ सितंबर को। एंड नॉट टू मेंशन, दिस इज एन इंटरनेशनल एमी नॉमिनेटेड एंथोलॉजी सीरीज, जिसमें एक नहीं चार डायरेक्टर्स अपनी चार अलग अलग कहानियां लेकर आते हैं, विच इंक्लूड्स विक्रमादित्य मोटवानी, किरण राव, शकुन बत्रा एंड विशाल भारद्वाज। और ये चारों एक बार फिर से लस्ट, लव और रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं विद न्यू स्टोरी लाइंस, जिसके बारे में डिटेल्ड बातचीत बाद में होगी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा 5 सालों से एक फिल्म डेवलप कर रहे हैं एंड उसका नाम है कर्ण, जो फाइनली अगले साल से शूट होगी, दैट टू फ्रॉम अगस्त। दिस इज गोइंग टू बी अ 2 पार्ट्स फिल्म, जिसका लीड निभाने वाले हैं नन अदर देन सलमान खान एज द वॉर हीरो कर्ण। महाभारत के मोस्ट कॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर कर्ण के ऊपर बन रही है ये फिल्म। बट हेलो हेलो, उसके पहले राकेश ओम प्रकाश मेहरा एक क्विक 30-day फिल्म भी बना रहे हैं, विच इज गोइंग टू बी अ स्मॉल टाउन लव स्टोरी, और उसको लीड करने वाले हैं नन अदर देन विक्रांत मस्से। लीजिए, आफ्टर मंथ्स ऑफ स्पेक्यूलेशंस, फाइनली बादशाह और ईशा रिखी ने अपने सेपरेशन को कन्फर्म कर दिया है।

कदम उठाते हैं तो भैया आपके घर में वो चाचा फूफा फूफी है ना, बस उनका ही किरदार निभा रहे हैं आप रियल लाइफ में। बाकी तो जैसे बच्चे को गुब्बारा काफी, वैसे समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

दोस्तों मिड वीक का भी ना एक अजीब ही फेज होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब मंडे का शौक निकल जाता है ना और फ्राइडे की एक्साइटमेंट आई नहीं होती है, तब ये जो मिड वीक है ना यानी वेंसडे, ये बिल्कुल मूवी का इंटरवल जैसे लगता है। मतलब स्टोरी तो चल रही है पर क्लाइमैक्स अभी दूर है। और इसी वक्त ना इंसान सबसे ज़्यादा चाय पीता है और सबसे ज़्यादा बस वीकेंड आ जाए यही बोलता रहता है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार इसी मिड वीक में ना सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव आइडियाज़ भी आते हैं। तो आप भी बताना दोस्तों कि आपका मिड वीक मोटिवेशन क्या है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और मिड वीक में आपके मूड को अप करने के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Yeah, Jadeep.
2: Hanji.
3: Yeah. भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना। ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था।
2: हाँ जी।
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो?
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं।
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
3: मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के।
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो, उसको काम क्यों नहीं करेंगे?
3: क्या यूज करूं, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा।
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको।
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
2: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं, यूज कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की।
3: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा।
2: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा।
3: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस। ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा।
2: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी। अच्छा, तो खुलेगा।
3: हथौड़ा जोर से मार दो, सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी। अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो, गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा। कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम। जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही।
2: तो कहाँ पे है तू?
3: बैंक में।
2: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
3: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर अपना हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ने।
2: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
3: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप?
2: अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर, तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो।
3: ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ। ठीक है, मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहां इतने सारे गाने बनते हैं, कुछ हिट होते हैं, कुछ फ्लॉप होते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं ना जिसका हर एक गाना दिल को छू जाता है। और 2008 की रिलीज दोस्ताना का एल्बम, ओ हो हो, इट वॉज वन दैट एल्बम जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक था। विशाल शेखर कंपोज, जिसके सारे गाने इतने अमेजिंग थे, लेकिन जब दोस्ताना रिलीज हुई थी और टीवी पे ये गाना रिलीज हुआ था तो माय गॉड, माइंड ब्लो हो गया था। जी हाँ, मतलब नॉर्मली ऐसे टीवी पे नॉर्मल कलर्स दिखते हैं, लेकिन सडनली एक दिन ब्लू पानी दिखने लगा। उसमें जॉन अब्राहम अपनी अमेजिंग सी स्माइल लेकर मायामी बीच पे दिखाई दिए विद शिल्पा शेट्टी डूइंग शट अप एंड बाउंस। माय गॉड, दैट सॉन्ग नॉट जस्ट ब्लू माय माइंड विजुअली बट ऑल्सो ब्लू माई माइंड म्यूजिकली, क्योंकि सुनिधि चौहान की आवाज़ और अमेजिंग सा ये गाना मायामी बीच पर शॉट, कि जब मायामी जाओ तो ये गाना दिमाग में प्ले ना हो, बैकग्राउंड में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज बातें करते हैं दोस्ताना के एल्बम के बारे में, एंड स्टार्टिंग विद दिस वन सॉन्ग शट अप एंड बाउंस राइट हियर ऑन मिर्ची। तो आपके लिए मैं बजाने वाली हूँ शट अप एंड बाउंस, लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल वॉल्यूम बढ़ा लीजिए बिकॉज इट्स गोना बी शट अप एंड बाउंस बाय सुनिधि राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Parlor Banquet Edison.

एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और 2008 में एक ऐसा ही एल्बम बना था जिसका यार हर एक गाना एक से बढ़कर एक था। बात हो रही है दोस्ताना मूवी की, या जिसका म्यूजिक दिया था विशाल और शेखर ने, और जिसको प्रोड्यूस किया था हमारे करण जौहर ने। वैसे तो यार शराबन बाउंस इस मूवी का सबसे ज़्यादा फेमस गाना था, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मायामी जा रहे हो और जॉन को इमेजिन ना करो, शिल्पा शेट्टी को इमेजिन ना करो, और ये गाना बैकग्राउंड में प्ले ना करो। लेकिन और एक गाना है इस मूवी का जो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही फन है, एंड दैट इज मादा लाडला बिगड़ गया। मतलब माँ को अगर डायरेक्टली आपको डांटना नहीं है तो आजकल माएँ मादा लाडला बिगड़ गया ही कह देती है। और जिस तरह से किरण खेर ने चिल्ला कर जोर से कह दिया था हाय रब्बा मैनू चख ले यार, उस वजह से वो लाइंस एक्चुअली गाने में थी ही नहीं, लेकिन वो इतने फीलिंग्स के साथ बोली गई थी कि विशाल शेखर ने डिसाइड किया कि ये जो पैच है ये हम गाने में एक्चुअल गाने में भी यूज़ करेंगे। तो इसलिए बीच बीच में आपको किरण खेर की आवाज़ भी आएगी कि हाय रब्बा मैनू चख ले। बस माँ के जो फीलिंग्स है उसे विशाल शेखर जैसे कंपोजर्स भी बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर पाए, उन्होंने उनका पैच उस गाने में रखा और कहीं ना कहीं उसी वजह से ये गाना हिट हुआ है। तो चलिए सुनते हैं मादा लाडला बिगड़ गया फ्रॉम दोस्ताना। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस मूवी। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJMirchiSiddhi SIDDHI। और तब तक के लिए मादा लाडला राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। The stage is set. Indian American Women Entrepreneurs Association presents साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, बना था और बिल्कुल बना था। 2008 में एक ऐसा एल्बम बना था दोस्ताना, जिसका यार हर एक गाना दिल को छू गया था। एंड वन ऑफ द मोस्ट पार्टी सॉन्ग्स जो इसी मूवी से, इसी म्यूजिक एल्बम से निकला है, दैट इज देसी गर्ल, संग बाय शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान एंड विशाल ददलानी। ये पूरा का पूरा एल्बम ही वैसे तो यार विशाल शेखर ने बनाया है, लेकिन ये जो गाना है वो काफ़ी खास है, क्योंकि इस गाने ने ना प्रियंका चोपड़ा को एक आइडेंटिटी दी। जी हाँ, मतलब प्रियंका चोपड़ा वैसे तो इस मूवी में लहरों में एंट्री मारते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन इस गाने के बाद देसी गर्ल हर शादी का एक एंथम भी बन गया। और हमें भी कहाँ पता था कि प्रियंका भी इंटरनेशनल हो जाएगी और उनकी एक आइडेंटिटी ही बन जाएगी देसी गर्ल। तो जी हाँ, देसी गर्ल वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम। वैसे तो हम शट अप एंड बाउंस के बारे में बात कर चुके हैं और आप मादा लाला तो सुन ही चुके हो, तो चलिए आपके लिए बजाते हैं देसी गर्ल राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धी, SIDDHI। और तब तक के लिए देसी गर्ल राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कुछ फोटोज देखते ही सारा सीन फिर से रिप्ले हो जाता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ फोटोज देखते ही ना सब कुछ याद आता है कि कौन लेट आया था, किसने सबसे ज्यादा फोटोज खींचे थे और कौन बिना रिहर्सल के डांस फ्लोर का हीरो बन गया था। फिर चाहे वो फोटोज बेस्ट फ्रेंड की शादी के हो, या पहली दिवाली विद फैमिली के हो, या कोई ऐसे फंक्शन की जहाँ सालों बाद सब एक साथ मिले हो। और इसीलिए तो फोटोज में ना सिर्फ चेहरे नहीं होते, पूरा मूड कैप्चर हो जाता है। और जब कोई मोमेंट इतना खास हो तो उस दिन पहनी हुई हर चीज भी उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। और शायद इसीलिए इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप का रिश्ता सिर्फ फैशन से ही नहीं, यादों से भी होता है। और अब उसी एहसास

0: न्यू जर्सी के और भी करीब लाया है फ्रंटियर राज। उनका यूएसए फ्लैगशिप स्टोर अब एडिसन में ओपन है, जहां हैंडलूम साड़ीज, ब्राइडल कोटोर, मेंस वेयर और रेडी टू वेयर के साथ मिलती है 70 ईयर लीगेसी ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप। विजिट फ्रंटियर राज एट 1655 ओक ट्री रोड इज इन न्यू जर्सी। और दोस्तों, आपके फोन में वो कौन सी ऐसी फोटो है जो देखते ही आपको पूरा दिन याद आ जाता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और साथ में ये भी बताइए कि उस फोटो का परफेक्ट बॉलीवुड बैकग्राउंड सॉन्ग कौन सा था। हो सकता है कि आपकी यादों का वही साउंड ट्रैक मिर्ची पैग लगाना बन जाए। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: are you?
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nafiyat bala murga. Mirchi murga.
3: Hello.
4: Hello. Anshika? ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
3: हाँ जी,
4: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
3: जी बताइए, नाम क्या है?
4: संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
3: नहीं, कोई बात नहीं।
4: तो मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
3: संतोष क्या करता है? व्हाट डू यू
4: डू? दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस हंस क्या?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

शमशाद लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में, जहां हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे खास एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना अमेजिंग है। जी हां, बात हो रही है 2008 में रिलीज दोस्ताना मूवी की, जिसके जो गाने हैं वो कंपोज किए हैं विशाल शेखर ने। और क्या कंपोज किए, मतलब एक से बढ़कर एक गाना है इस एल्बम में। और वैसे तो हम इतने सारे गाने प्ले कर चुके हैं, लेकिन एक सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है रौनक पटेल से, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में। उन्होंने कहा है कि यार जब भी कोई ट्रिप जाती है और दोस्त साथ में होते हैं तो ये गाना तो हमेशा बजता ही है उस ट्रिप में फ्रॉम दिस मूवी, क्योंकि ये गाने का एक टैग लाइन है, तू है तो आई विल बी ऑल राइट। और हर बार दोस्तों के साथ यही फील होता है कि भाई तू है ना तो आई विल बी ऑल राइट। तो जी हाँ, चलिए इसी फीलिंग के साथ रौनक पटेल की रिक्वेस्ट पर ये गाना बजाते हैं फ्रॉम द मूवी दोस्ताना, विच इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एल्बम्स। तो दोस्तों आप भी मुझे बताइए ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जिसके सारे गाने आपको पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI, क्योंकि यार बजाते हैं ना उसके सारे गाने यहाँ पर और कहाँ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
4: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम के बारे में यार, जिसका हर एक गाना धमाकेदार है, दिल को छू जाने वाला है। जी हाँ, 2008 की रिलीज दोस्ताना मूवी, जिसे प्रोड्यूस किया था करण जौहर ने और जिसका म्यूजिक कंपोज किया था विशाल शेखर ने। यार क्या एल्बम बनाया, हर एक गाना दिल को छू जाने वाला था। और एक ऐसे ही गाने की रिक्वेस्ट आपसे आई है, दैट रिक्वेस्ट इज फ्रॉम प्रियंका। और प्रियंका कहती है, वैसे प्रियंका रहती है जर्सी सिटी में, लेकिन वो फिलहाल विजिट कर रही है एडिसन, अपने यू नो पार्टनर से मिलने आई है। और जब भी वो लोग डेट नाइट्स पर जाते हैं, तब ये गाना बहुत बार वो अपने प्लेलिस्ट में बजाते हैं। एंड दैट इज़ खबर नहीं इट्स एन आयरनी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डेट पे कहाँ जाना है यही हमको खबर नहीं होती। लेकिन ये जो गाना है श्रेया घोषाल की आवाज़ में, बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है, तो श्रेया घोषाल एंड शान की आवाज़ में। तो चलिए आज प्रियंका के लिए ये गाना प्ले करते हैं। आयरॉनिकली उनका नाम भी प्रियंका है एंड शी इज़ गोना लव दिस सॉन्ग। तो चलिए आज प्रियंका के लिए खबर नहीं प्ले करते हैं। लेकिन आप भी दोस्तों मुझे बता सकते हो, विच इज़ दैट वन एल्बम जिसका हर एक गाना बहुत अमेजिंग है और आप कभी स्किप नहीं कर पाते हो। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI, क्योंकि मेरा तो काम ही है आपके लिए वो गाने प्ले करना, राइट हियर ऑन मिर्ची। और कहाँ, इट्स हॉट।

बॉलीवुड की एक अच्छी बात यह है कि सिंगर्स का काम ना कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज भी एक अच्छी आवाज सीधा दिल तक पहुंच ही जाती है, चाहे रोमांटिक हो, सुकून भरी हो या थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव। आज के गाने लाउड होने से भी ज्यादा लास्टिंग होने पे फोकस कर रहे हैं और ऑनेस्टली ये फेज काफी रिफ्रेशिंग लगता है। तो आप भी बताना कि आपको बॉलीवुड सॉन्ग में सबसे ज्यादा क्या कनेक्ट करता है, लिरिक्स या वॉइस? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत आवाज का ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Gambana. Burka, burka. Na wird bala burka. Milci burka.
1: हेलो
2: हेलो, ये कमलेश जी?
1: हाँ जी, कौन?
2: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन सा पैसा चाहिए तुम्हें?
2: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
1: अरे, तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते हैं।
2: देखिए, मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
1: अरे, तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे। हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
2: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
1: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चंदा मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
2: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
2: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
3: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
1: yes,
3: with us?
1: Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
3: It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
1: No, not an issue. 750 only?
3: Yes, sir, absolutely.
2: Nah, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aayi. Lajwanti ki ekdam gheje mein pad gayi.
0: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
4: Yeah, bagla.

कभी कभी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करने के लिए बहुत साल नहीं, बस एक डिसीजन काफी होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और हम अक्सर सोचते हैं कि यार नया करियर स्टार्ट करना मतलब लॉन्ग वेट, लॉन्ग प्रोसेस, पर हर जर्नी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। अगर आप हेल्थ केयर फील्ड का हिस्सा बनना चाहते हो तो शायद ये बिगिनिंग आपकी सोच से ज्यादा क्लोज हो, क्योंकि एज लेस एज 1 month ट्रेनिंग यू कैन नाउ बिकम अ फ्लेबोटमी टेक्नीशियन बाय जॉइनिंग एम्स एजुकेशन, क्योंकि प्रोग्राम्स ऑनलाइन और ऑन कैंपस दोनों जगह ऑफर्ड है। आज ही कॉल कीजिए 9082220002, 9082220002, या फिर विजिट कीजिए aimseducation.edu, क्योंकि क्या पता शायद हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आपका करियर बनाने का सपना सिर्फ एक डिसीजन दूर हो। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
3: अब मिर्ची खा।
5: Radio Mirchi, it's hot.

शमशादा लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और लाइफ में ना अक्सर जो चीज़ें सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होती है वही कभी कभार सबसे ज़्यादा ओवरवेलमिंग भी लगती है। फिर चाहे नई जॉब हो, नया सिटी या कोई बड़ा डिसीजन, यार शुरुआत में ना सब कुछ एक रोलर कोस्टर राइड जैसे ही फील होता है। और इसी एक्साइटमेंट और कन्फ्यूजन के बीच हम अक्सर वो गलतियाँ कर बैठते हैं जो शायद थोड़ी सी गाइडेंस से ना अवॉइड हो सकती थी। और घर खरीदना भी कुछ ऐसा ही माइलस्टोन है, इतना बड़ा डिसीजन कि एक्साइटमेंट तो होती ही है लेकिन सवाल भी हजार होते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि इस जर्नी को थोड़ा सिंपल कैसे बना दिया जाए और सबसे कॉमन मिस्टेक से कैसे बचा जाए। मेरे साथ है मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लाइन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

0: बसंती
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
2: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। The stage is set. Indian American Women Entrepreneurs Association presents साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 903-364-7244, यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
5: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

पहले बॉलीवुड में सिर्फ फ्राइडे का वेट होता था, लेकिन अब तो ट्रेलर रिलीज भी एक मिनी इवेंट बन चुका है। शाम शानदार लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आजकल किसी फिल्म का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया ना दो टीम्स में डिवाइड हो जाती है। एक टीम कहती है कि मुझे तो यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाना है, और दूसरी टीम कहती है कि नहीं नहीं पहले रिव्यूज आने दो। और मुझे ना इस जनरेशन की एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है कि पहले हम सिर्फ फिल्म देखते थे, लेकिन आज हम ट्रेलर ब्रेकडाउन देखते हैं, फैन थियोरीज पढ़ते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक नोटिस करते हैं, और टीजर के एक फ्रेम पर भी डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। और शायद इसीलिए बॉलीवुड सिर्फ मूवीज नहीं कॉन्वर्जेशंस भी क्रिएट करता है। वैसे आप ही बताइए दोस्तों कि आप किस कैटेगरी में आते हो, ट्रेलर देखते ही टिकट बुक करने वाले या पहले आप रिव्यू सुनते हो? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और चलिए अब ट्रेलर से सीधा पिक्चर की दुनिया में चलते हैं एक जबरदस्त बॉलीवुड के गाने के साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स

लिए गाना बना चुका होता है। और इसीलिए कुछ सॉन्ग्स ना सिर्फ हिट नहीं होते, वो हमारी लाइफ के माइलस्टोन्स बन जाते हैं। चाहे फिर स्कूल फेयरवेल हो, पहली सैलरी हो, पहला प्यार हो, या फिर फैमिली रोड ट्रिप, हर मेमोरी के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड सॉन्ग ज़रूर बज रहा होता है। तो दोस्तों, आज का सवाल बहुत ही आसान है। अगर आपकी लाइफ पर फिल्म बने तो उसका टाइटल ट्रैक कौन सा बॉलीवुड गाना होगा? DM ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए देखते हैं कि आज का अगला गाना किसकी कहानी का बैकग्राउंड म्यूजिक बनने वाला है। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La virtua la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Hello.
3: Hello.
4: Yeah, Jadeep.
3: हाँ जी
4: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना. ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था.
3: हाँ जी
4: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो.
3: मतलब
4: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं.
3: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
4: मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के.
3: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको. काम क्यों नहीं करें?
4: क्या यूज करूँ, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा.
3: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको.
4: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
3: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज, कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की.
4: काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा.
3: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा.
4: एक सेकंड अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस. ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा.
3: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा.
4: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी. अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा. चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ. 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर हैं, एक नहीं खुल रहा. कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम. जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही.
3: तो कहाँ पे है तू?
4: बैंक में.
3: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
4: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर. अपना हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ने.
3: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
4: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँगा आप?
3: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू तू जो कर रहा है कर. तू तू तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो.
4: ठीक है मैं मेरे पास कर रहा हूँ. ठीक मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

दोस्तों, कितनी खूबसूरत बात है ना कि इस एक लम्हे ने हम सबको जोड़ दिया है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और इसी वक्त न्यू जर्सी में कितनी सारी गाड़ियाँ चल रही होंगी। किसी के ऑफिस से घर की ड्राइव है, कोई ग्रोसरी लेने जा रहा होगा, कोई बच्चों को पिकअप करके आ रहा है, और शायद किसी की रोड ट्रिप ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है। सबकी डेस्टिनेशन अलग है, लेकिन कुछ देर के लिए ना हम सब एक ही गाना, एक ही कहानी और एक ही फ्रीक्वेंसी शेयर कर रहे हैं। और शायद इसीलिए रेडियो मुझे सबसे ज़्यादा खास लगता है, क्योंकि ये सिर्फ गाने नहीं बजाता, ये अलग अलग सफरों को कुछ मिनटों के लिए ना एक साथ ले आता है। तो अगर आज मिर्ची आपके सफर का हिस्सा बनी है, तो मुझे जरूर बताना कि इस वक्त न्यू जर्सी के किस कोने से सुन रहे हो। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI, क्योंकि इस पल में हम सब जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस खूबसूरत पल को सेलिब्रेट करते हैं विद दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Bala Banquet Edison.

दोस्तों, कभी कभी लाइफ के छोटे मोमेंट्स ही ना सबसे फिल्मी होते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जैसे कि कार में बैठते ही अचानक से तुमसे ही बच जाए, या फिर ड्राइव के वक्त यूं ही चला चल रहा ही लग जाए, बस वो मोमेंट ही काफी होता है पूरा मूड चेंज करने के लिए। क्योंकि यार बॉलीवुड हमें यही तो सिखाता है, हर दिन में एक छोटा सा सीन ऐसा जरूर होता है, बस उसे नोटिस करना पड़ता है। तो आज का सवाल बहुत ही सिंपल है, आपके दिन का ऐसा कौन सा मोमेंट था जो थोड़ा सा फिल्मी था? टेल मी ऑन इंस्टा @RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल मेरे दिल के फिल्मी मोमेंट के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @rjmirchisiddhi SIDDHI। और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: Let's face it, the only time एक लड़की एक लड़के को डैडी बुलाना चाहती है is when she's getting naughty, not otherwise. लेकिन मेरे एक्स ने मुझे मजबूर कर दिया था कि on a daily basis ना मुझे उसमें like पिताजी दिखने लगे थे, not necessarily मेरे. It just gets really disgusting if you look at it like that. But भाई ये बंदा मेरे अंदर like संस्कार drill करने की कोशिश कर रहा था. मुझे ऐसे ज्ञान देता था अपने दोस्तों को मिलने से पहले कि यार ज़्यादा मत पोलियो, ज़रूरत नहीं होगी तो मत पोलियो. I was like क्यों बे, क्यों करूँ मैं ऐसा? It's a democracy. I have the freedom of speech. मेरा जो मन आएगा मैं बोलूँगी. But he was like, नहीं, you know what? Ladies look really attractive जब वो कम बोलती हैं और जब भी बोलती हैं कुछ consequential बोलती हैं. I was like, really? Is that the case? तो चल, अब जो अगला सेंटेंस मेरे मुंह से निकलेगा ना वो हाइपर कॉन्सिक्वेंशियल होने वाला है. I am dumping you. And he was like, क्या बात?

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La
1: virtua la burga. Mirchi, burga. हेलो
2: हेलो, ये कमलेश जी?
1: हाँ जी, कौन?
2: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन से पैसे दिए तुम्हें?
2: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
1: देखिए,
2: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? नहीं, हमने कब लिए आपसे?
1: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
2: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
1: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चलना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
2: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
2: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
3: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
1: there? Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
3: It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name?